खोरमजरी तैबंग से नंगी खुया थम्बालदा नहाक पुमनमक की मपुनी निंगनरी पुमनमकना अमुक्तदी नहाक की सक्तंबु उजगे खुरुमनरी ननाय उइबा खुबाक चंगजौ तरा लोनना करीसु खंगजद्रब नचा खोइना इबुंगो नंगी नफमदा असोय अरान याउख्रबसु ngakpiu to labana chabu khurumjari taibang sembiba nangi khuya thambalda

खुरुमजरि इमा ब्रिंदा देवी तो लबन चाना हन्ना हन्ना न तिक नयाय गुन गया न योम लिबिनी इमा नहाकते नहाकते सतीनी तुलसी इमा पापुम्ब कोपी भी गंबी नहाकनी पूजा खुदिंगी गांथोरी भी नहाकनी खुरुमजरि इमा ब्रिंदा देवी तो लबन चाना हन्ना हन्ना।

0: हेमा दादा कदम लेंगो बनो ए इशासु यारी ना
1: ए ए ए गे मत थंबाली ना आ अंगांगी लाइरी क पोई ग लेरु बनी
0: ओ
1: आ गे मत थंबाल गी इशानु पी रोमी का ग सुओ अखोई थोई ब क्लास मत त तमी नै हाय ने
0: ओ हाय हाय क्लास मत त तमी नै हाय ए मखोई अनि सिना मरोल मकम दौ दोनो खंगरे द दादा
1: ए इशानु पी दी लाइरी यम फय हाय ने ए करिसु सिंगनो रु नि सन जी दी अखोई गी तबम थोपा अखोई न तौगनी मखोई सु होने जगनी अंगम ब कैनो
0: होय होय दादा अदो दादा युम द लिंग सिलु खिसे मुता सागा था उगिसे
1: हायमा
2: इमा इमा इमा
0: कदोरे
2: हायमा थोयबा यम थाजदी ए पाबा सुने पाबा युम दंगा हक्त संगु खिसे इमा थोंगाल थोके न थिरक पने संगु खिसि लाओ थोयबा
1: ए इशान हायमनी न संगु तारे दना
2: लाओ थोयबा जंगा सिलाओ ए गाविने पाबा लाइने द कैनो महंग होरगे
0: सिदा फम्बी ओ दादा
1: आ यारे यारे यारे
0: ऐसा ग छेमजरके बुङा सिदा फमुसे
3: होयमा
0: मा रोमिका नन बाबा होय ग वारी सारा मुको
2: होयमा
1: कैनो ने इशान हंगे है बबो
2: पाबा
1: हाउने
2: इक्वालिटी लिबर्टी अदुगा जस्टिस का हारि सिबु कैनो बा थोयबा नन खंगब्र
3: ऐशो युम यौरगा हंगे न खलमिने नंग न हंगा पसे याम फारे ओ करी है ना बाबा बसिबो
1: हो हो हो हाय गे हाय गे हाय येंगोय एफोई लेबा कांगलोन हाइबिटी डेमोक्रेसी हाइबसे मसी ख्वाइदि की मरु ओइबा आइडियल प्रिंसिपल नतरग फिदम ओम मोदिदि इक्वालिटी लिबर्टी अमसु जस्टिस हाइबसे प
2: अदुगा बाबा सिगी वाई सिगी वाहन थोकसे कै हाइनो दुसु अमता हाइबियो
3: अदुगा बाबा डेमोक्रेसी हाइरि सिसु करिनो अदुसु ताकबियो
1: ओ दिदी आइ डेमोक्रेसी हाइबिसि करिनो करम बलैङा नो हाइबिसि दै हान तागे को
3: होय बाबा
2: हाइबियो बाबा
1: हां डेमोक्रेसी हाइबिसि अचम्ब वाहन थोकता मियाम न मखोइगी लैङा कदोइबो मिसिंगो खनबन असिगुम लेंगाक ती मियाम न लेंगाक सबनी अदुना डेमोक्रेसी ददी मियाम गी शक्ती न ख्वाइदे गी मथक तले
2: अदो पाबा
1: हाउ ने
2: डेमोक्रेसी गी लेंगाक हाइबसे करम ब मतम दगी हौरके
1: आ अंगसा डेमोक्रेसी हाइबसी यूरोप ता याम न तप न तप न हौरपनी 17 18 सुब चेही सादा हाइबदी सेंचुरी द को यूरोप ता थोकीबा अचौब रिवोल्यूशन सिंगना डेमोक्रेसी हौरपनबगी मरु हुनकी रिवोल्यूशन सिंग असिना लैबा ङाकपदा आइनगी मतिङ न ङाकपा रूल ऑफ लॉ सनन बाउकी को अदुना डेमोक्रेसी गी ख्वाइदिगी मरु ओइबा हौरपफमदि रूल ऑफ लॉ हाइबसिनी को अदु डेमोक्रेसी गी लेङाथदि रूल ऑफ लॉ हाइबसिना ख्वाइदिगी मरुनी निंथौना नत्रग लानमी की लेंगाक्तदि निंथौगी नत्रग लानमी की मको के अपाम पामददा लैबांगाई मशीननि डेमोक्रेसी गा अतै लेंगाक खेनरिस डेमोक्रेसी नतब लेंगाक्तदि रूल ऑफ लॉ हाइबसे कया चनदे को लेंगाक दिबमी अमखक्तुगी वखल लापा मदुद लैबा ngakpani को
2: होय बाबा खंगजरानि
1: आदोंगा साइनंग ना हंखिबा इक्वालिटी लिबर्टी जस्टिस का हाइबदो आदो मुखायरगे को
2: हाइबियो बाबा
1: डेमोक्रेसी देदि मियाम न खनबो मिहुत न लैबा ngai हाइरे को मियाम दे शक्ति ले अदुना डेमोक्रेसी दा मे पुनम आयंगि थोंग दे छ माने मिशन सु थबक तोब सु मंत्री सु लोइन छ माने खंगने को आंगी मांगा मी पुनमक असों मसा खाइदबा सब मानब सिबुनी इक्वालिटी हरिबसि अदु अमुक्षु मी पुनमक निंग तंबपि अदु द नतना अकनब क्राइटेरिया बुलेरबदि बो थादाबा अमदि लेप याबगी निंग तंबले अदुगा ओम सुबदा आंगी थोंगदा सब मानब अचुंब वायल फंगबा जस्टिस हाइड वसिंगसे डेमोक्रेसी गी ख्वाइदिगी मरु ओइब फिदमनि खंगदा फिदम सिंगासिना मरुम ओइदुना डेमोक्रेसी हाइबसिना ख्वाइदिगी फबलेङा नि हाइदना मयाम लोंनि यानै
2: ओ
3: बाबा
1: हाउने
3: आइखैगी मणिपुर दसु निंथौ पालमै हाय 아두나 데모크라시 라이람다브라
1: 주미 에고이 마니푸르다 타이네데기 닝토 빠르갈라이 아두부 군슈바 체히샤기 호럭바 잉글리싱어마 자마폰 군트라니 판데기디 히잠 이라보나 루싱어가 마니푸르다 다이토 레이벌랭아 아마 시엠나바 디만토 호럭기 데기 잉글리싱어마 자마폰 니푸테레타 브리티스나 차크르바 마퉁 Manipurna ning tamlaba matamda ning thawgi lengak leigadra natraga mihut khallaga siamba lengak ama leigadra haibase yam kanne yetnarami
3: ah
1: degi di miyam khanba mihut na siamba lengak ama pambana hena kanbadagi constitution making committee ama cma
2: ah
1: aduga maduda siamba du na chatna khiba constitution adubu Manipur State Constitution Act 1947 hina khangnaki kariyan khangnaki Manipur State Constitution Act 1947 hina khange ko ek asina maharaj ne state ki mako oiraga sehi ong ong gi oina khanba mihut na semba council of minister ama leki sanaki ba ek aduna daita chap sana leira balenga ti pibangam khidi adubu legislative assembly miyaung gi mihut haibna chingba democracy gi institution khara di hodoki samna haibda manipur da democracy satna khibagi wari ni kaorn ko
2: kauza re baba adu baba democracy gi lenga akse kari gi damak pamli bano haibadi kari haina khungane
1: madu su yamna phajaw wa ni adu asai khoina haina khiba equality liberty amsung justice haibadi mathakta masagi yanaraba chana kanglon haibadi constitution laiba adegi political party sing laiba matam chana chana mihut khanba amsung laiba miyamgi hakpi ba haiba sing asina miyamna democracy lenga pami aduga khwaidegi maru oiba amadi democracy chatpa laiba singda socio economic amsung political problems sing khana nai na bai
3: asina taba atai maram sing de lai ribra baba
1: lady lady democracy lai nga pada warep low wa si khada di tappi haine adubu miyam gi apam bi yeng laga lepe aduga mot manada ba lai raga su khana na bagi mapham pi amarom da angangsa democracy lai nga ta miyam gi ikai khumna ba amsung ning tam ba haibase mayak sheng pi pun mok sina maram orga democracy lenga ase ayam bana pamne
2: baba
1: haung ne
2: democracy da bot haibase kaya maru oi bagi
1: mihut khan bagi upay ma oi ba bot haibase di democracy da yam na maru oi ko bot thada ba haibase an ba dedi mi oi khare da gi hak oi ram yang kanna iho ho do no hot arama matung da mipum ting na bhot tha da baya bagi hak phang rak pani democracy de di miyam na makhoi gi leiba ngak na bagi da mak mihut khan bani na bhot hai basi yam na tangai phada ba maru oi ba practice amun
3: baba
1: khaw na
3: bhot tha da ba aragi bhot le pa ga hai bada adugi matang da su khara khanghan biyo
1: ho ho bhot hai basi di miyam gi marakta gi mihut khanga da bani na political party singna natraga lanai bhol lem ning basingna candidate oiba sing adida gi arom ba bhot ta mana mana phai haina khan ba mi du da bhot thada bani he na bhot phang ba mi du pu miyam na ya bani haina mit oina khalle degi de asigu ma matam da political party sing gi thoi do pa thong dang lei ko angsa miyam na bhot thada du na khalle iba ma singna ahen ba ma sing haibadi majority phangdrabadi party mayam chungsinna duna lengak sembe yai masibu coalition government haibi coalition sarkar chungsinna ba sarkar haibani ko ningsingara
2: ningsingani baba yam nungai
0: tada cha taksi
1: e ya ya thamot
0: ibunga chese cha tha use
3: hoi ma
0: nang baba hoi na nu matang la pasi da ne ibi ma nang na marola ma ing na nga te hek phamandi hangi bajina
1: mo ba hangjesuno hangjesuno ta pi ragal wore kai dorogi chenji di makoi ne lairi kai bashe 아이코이 모양기니네. 라리 가이버시나 마코이 아싱문 마른. 에 따무 따무 따무 이사시디 땅링 그이 땀.
2: 바블락 비라가 라리 딱피 바세야. 아이 디암 누가이고. 누가이 저토이 바낭디야.
3: 누가이. 아도이마. 아이디 라이릭 바바다기 자탁 바시네 헤나 누가이.
0: 이사는 누가이라가 로이레.
1: 데마 자주 타야 살루기게 고.
2: 아이 바바.
0: 아니 다다.
1: 데메로미카. 낭나 강도블레 이러가 내내 이빠이 나한테 했더라고.
2: 락도이니 바바. 대바. 잘로고.
1: 아 디디 이비마이 탐바 잘레고.
0: 파니 파니다.
3: 로미카 잘레고.
2: 호이.

थरम संदोकना ताहन जरी बसे आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दगिने हौजी पुंफा मसेदा बुधना लाक्चरी अतोप मंगाल थरम मसेदा इदुल फितर थरम मसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूनिट एससीईआरटी गितेंग बांगा लुइनना पुथोक चब थरम ने लौबिरसे इदुल फितर

0: वो भी ऐप से। वाह, फसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गेट खुदल के हम सुबदा अरिजीत सिंह मेट ब्रो समदी खुशबूदगी इसे यमा मोगलान थोक चरी।

मोहित चौहान मदी अंतरा मित्रादगी सयमा मयाम पुन्न तमिनरे मधंग असिदी देवनेगी मदी परोमिता दास गुप्तादगी सयमा मुक नांथोक चरी।

0: मां भंसी ने नंग तादा गाएगा बुन्ना लाई भी नखी बत नसी दी आई इतन तन नहीं तो मुझे हो रहे
1: इसे हाउ जिक्ती है यम खंजल लोरन हो इसे मापू मागे नंग दम ने यम योरा बनी नहीं से सो आई यम खंजल खरा कीजे
0: आई को लेना नंग हन करनो मापम सीधा नंग सु इसे एक बुन्ना लाई रसे
1: यानी देखे आई अदम हंजक रखे
0: नती ये भी माँ आई कोई दी नहीं तो उम हिंग बहाय बसे खुद ओं यहाँ न थी निंगाई ने अधूना नंग सु आई कोई की लगता तिन दुना लाई ररो इसी है ना हरी बसे यार
1: आई बो इसी है ना हरी बसे न चुम लत्रा भरे मतम खरा इसी इस्ता लाई बहाय तो ने होई जे इसी ना हक्षांग कंद्री भाव ननाव इसी हिस्टर लाई रख
0: अधुनी दना

नोवा फिल्म से राजूनोंगी नाइटों खोजल सुरेश हिदंगना सैरेंब ओ गीतना सैरंग विषय ताबीर मथंग लुखचरी लई एम फिल्म साधना सरग्रम की खोजल सनातन निथौजा सैरेंब सकोल सेम तीजेंद्रना सैरंग विषय।

0: हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून
1: हेलो
0: ले ताजा रे हाई बी यू मिंग ले फम तक पी यू
1: हेलो सर,
0: ताजा
1: सुनू।
0: ताजा रे मिंग ले फम तक पी यू
1: लेकिन अभी मुझे
0: लेकिन थबी देगी कना हाई बी बा
1: लेकिन
0: मिंग दो ताब गम जत्रे अमुतक तक पी यू
1: हाय के लोन ताहिर जी तो बा
0: हुजुकी मिंग दो ता कोई मैयक सेना ताब फंग जत्रे अमुतक तक पी यू मिंग दो
1: हाँ कौन से आम तक
0: मीना दी तपी हरक ते
1: आई फोन जी ना लखन दी आम तक ना साफ
0: मिंग दो अमुतक तक पी यू
1: हाँ वही प्रोग्राम जे आई दी मांग लग रहा है ना खाली रंग दो मुहल्ला में ना सब मुलायम जरे था
0: हाय हाय मिंग
1: प्रोग्राम।
0: दो मिंग दो तक हाई बीरा मु
1: हेलो
0: हेलो ताना द्रबा माले मिंग दो तक तक पीरा मु लेकिन
1: ओ
0: थबी देगी
1: था आओ खर बता रहे था
0: हाय हाय लेकिन थबी देगी मिंग दो तक हाई बीरा मु
1: प्रोग्राम जब मांग रहा था लेन मुहल्ला में था यान में चंदर है नुआई जरे
0: हाय
1: था
0: हाय
1: रोई अदगी मैदान मोल की था ना यहाँ के शबाब तो वो नंबर दियो लाइजे के तो निशा
0: थकचरी थकचरी मतुंग लेप्तना ताबियु खोइगी संदोकचरी बा दोंगी दमुदन संदोकचरी बा थोरम सिंगसी अदुगा सरुक्सु दुम याबियु ngasigi oinadi saruk yabirakpa thakachari sei oina tamina ra si a phoi telephone line si su kitang nungai tre saure kwa thakachari sang si sang film dagi sei ma tahanjari sei sakli ba gaur kisor सैरेंगना राजमणि खुंजाम बदुग सैरांगना जितेन खाइडेमनी ताबीसी।

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Good afternoon, ladies. Ni kanawa bira bano.
1: Good afternoon, sir.
0: Mingle fangam ta takpiu.
1: Tongju dagi ambra ne sa.
0: Tongju dagi ambra hai bi bukwa.
1: Oi sa.
0: Kari wapam thambi gani.
1: Sa ta ye doctor of the day gi na min chen ne sa.
0: Mhm.
1: Pai ne ti ge ge ge oi da kai doctor le ne ge.
0: Mhm.
1: Tong ne ta si tong ge chen no ni doctor le ne ge una ba ki. Oi kolin to kam tam tham di la ge ni ti ge ge ge ko tong ta ge.
0: Mhm.
1: ऐ सुन ले जदन खान भाई दे कोई से ओके ये लेता द पाकन आई दे हम करना ओ जगह से को
0: हम्म
1: हम्म टाइम यंग फॉर द रो फ्रॉम द टास्क रवा टास्क रवा का ना हम है कम
0: बा
1: हम्म यंग ने से नो तो सुन ले ये से से तो जा जन तुम भी दी दी नो ना जान कर दे का
0: होय होय कोई ये हक्सेल द मेंटल की सिजु को फिजिकल खन तबा मेंटल हक की हेल्थ सिजु यम मरु ओइ बने ना थंबिरक पनी अम्ब्राना थंबिरी से कोई मरी लेनेबा कोई विभाग ता हेबे तारे कोई हौदोक्सगे तबदबु डॉक्टर्स ऑफ द डे जे कोई गुड आफ्टरनून लेडीज द थंबनी

0: हेलो हेलो,
1: हेलो सर, खाना
0: गुड आफ्टरनून लेडीज, नी कना वीर बनो
1: रोकते की ओफेलिया ने
0: ओफेलिया हैवी ब्रो
1: होय सर
0: उनथों न फजा करे मिंगजे कना न बुथों बीर मी बाबा
1: सर बाबा द तोलम बने
0: होय होय उनथों न ग्रीक की थिएटर की याम न मिंग लेबा कोई की कैरेक्टर मिंग मनी हाइव तारे ने को
1: होय सर आई पोको चाहि द दरमान तो हुई है
0: होय होय
1: दरमा
0: दुगी हेरे हेरो नी दो
1: फेलिया
0: कौए होय होय अदो सक्सु फजरा मनी दुदी ता सक्सु फजर देदा
1: याम नुंगाई जई सरु या बिरक पा करी वफम ที่มุงนวายไปเลยเตไอ้ที่มิลาหานาตากะจากะติโกนะจาไปเอาอะดุบุมิลายัมพะจะบะมาเป็นยอกิเอเป็นที่ต่างจังหวัดอะไหลบักตะตำลำมันนี่คันละเกยซะนะดรมานดรมานถะตุกิยะซะโหยๆอะดุดรมานดุยัมนวายเจอะดุมะตั้งจาบะดะอะมุกตั้งกะ habira o hai jage to muni
0: pani pani ye koi isanjare aduga koi gi thama su thama ma khai gumba thama ga numit koi gi tarani gumba hojal e hai tare ne kwa
1: oi
0: aduna mohan na rebroadcast to wa yara ni habi gi khudong chabale ngasi gi ta bi ho bro
1: ngasi gi ta ga ye sar ai dharma de yam nuai jai ba ali
0: ngasi gi sudum nung adum phajagi bra na khali kura kana ma asai
1: phajai phajai sar ngasi gi tu yam nuai
0: hai hai aduna mingji mingji jo ko ki drama ga mari le ne ba ming ko bi ra bani na drama si ma fajana ta bi re ha ba ta re ne
1: hoi cha ai cha ro gi tho am je ma ta si cha da je lo ne ba ta de yam no ai je cha pun si ng chang bo ju sa
0: ta ga chari ta ga chari sa ru ga bi ra pa ta ga chari
1: hoi cha
0: tan ja ta ga chari

हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज, नी कनाओ बीरे बनो। हेलो हेलो, ताबीरे बरो। हेलो,

नमस्कार श्रोताओं, मैं खुराइजम बेबी रोशनी आप सभी श्रोताओं का गीतमाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं। और आप सुन पा रहे हैं 103.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित FM संगाई चैनल से।

दोस्तों आज शनिवार है। आज के दिन हम अक्सर एक ही रूप कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं, लेकिन आज मैंने उन गीतों को चुना है जिसे आप सुनकर अपने गमों को भूल पाएंगे। तो सुनते हैं ये पहला गीत।

अभी आपने सुना एआर रहमान के संगीत निर्देशन में रोजा फिल्म से एक गीत। आवाज़ दिया है के एस चित्रा और एसपी बालासुब्रमण्यम ने।

अभी आप सुन रहे थे मैं रहूं या ना रहूं फिल्म से अरमान मलिक के आवाज में एक गीत। शब्द रचना रश्मि विराग के हैं और संगीत से सजाया है अमाल मलिक ने।

अभी आप सुन रहे थे किक फिल्म से सलमान खान और श्रेया घोषाल के युगल स्वरों में एक गीत। श्रोताओं, आपने अभी ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के FM संगाई चैनल से कार्यक्रम गीतमाला, और मैं आपकी रेडियो सखी खुराइजम बेबी रोशनी।

अभी आपने सुना शंकर एहसान लोय के संगीत निर्देशन में कुछ ना कहो फिल्म से एक गीत, आवाज दिया है साधना सरगम और शान ने।

श्रोताओं, आपको कैसा लगा हमारा आज का यह कार्यक्रम? मन तो नहीं करता आप सबसे विदा लेने का, लेकिन घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है। बात में 2:30 बजे आपसे फिर मिलेंगे फौजी भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में। मैं आज आप सब लोगों के लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत प्रस्तुत करूंगी, तो मेरा इंतजार कीजिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

बचाइए। नुजा साइनो लगतगी ना तुम लैराम घुरुगे, नुजा साइनो लगतगी ना तुम लैराम घुरुगे। ओइ न पाइब सना बुल, ओइ न पाइब सना बुल, याइ न बुताव हंगे। ओइ न पाइब सना बुल, ओइ न पाइब सना बुल, याइ न बुताव हंगे। लग्न रुगे नसीदी सान रुगे कुमैदी, लग्न रुगे नसीदी सान रुगे।

थोरम संदुक्तन तहन जरी बस आकाशवाणी फाल की एफ एम संगाई चैनल देगी हौजी लाथोक्चरी तोान तोानब मणिपुरी मतमी सिंह।

0: 老老对吧？罗密刚刚去老是的，才没那个把我们三十的眼瞪过他的事情。
1: 喂，爸爸。
0: 哎嘿，罗密刚，能不对姨妈的婆子那还让没过，是的拉不下。
1: 嗯，还让没爸爸，腿本来是还让没，爸爸个是对你呢。
2: 还让没爸爸，天个是爸爸的用跑起来跟你那还让没。
0: 哦，跑来跑来的。gari mayam si khara ko makanda mai ga than ka tarak pa matam do ada han si mi ko ma ga ko
1: hoi baba kai the da mai than ga tarak pa sa amuk ta udri ai gi ngasi na han ba ne
2: ai shu udri e mamma pha ba kai thel da tum ga lai ba gai do
0: pare pare ada ngasi ur ga loire da na ko
1: baba ngasai kang jai bung ma ning ge si da thoram ma tau bu do ai khoi na sangu ba du bu kai thoram no ऐडी कैम तो वाकल तादे
0: ओ नसाई की तो अदू ऐ कोई की मणिपुर ने स्टेरूट फंकी वगी थोड़ा में
2: ओ अदू दी ऐ कोई की मणिपुर से हान दई स्टेट ओयरम दी हाई दी रा पाबा
0: हान दी ऐ कोई की मणिपुर सी निंथो पान बले बाग ओयरम मिको याम सांगरे दवारी सी अदू बु इंग्लिश इंग मुझे मापन हुमुद्रा निथोई की जनवरी की तांग कुन मा थोई दा मणिपुर सी स्टेट हुट फंगदना मशा मरोम दोम लिंगाक सबा है बतो ओयकी मेंबर हम पूले बा मणिपुर लेजिस्लेटिव एसेंबली सुसेम की हाय रिबर लेजिस्लेटिव एसेंबली की मेंबर सिंह अखोई ना एमएलए हाय रे सुखांग नहीं को मकोई सिंह से प्रजा सिंह ना हक थे ना नखली अतुक चही मंगा की मतम ना मेंबर अमगी ताम ओए को अतुका अखोई की लेजिस्लेटिव एसेंबली हाय बदी विधानसभा ले रिबर से अचोबो स्टेट खरद दी लेजिस्लेटिव काउंसिल हाइबदी विधान परिषद हाइब अमगा अनी लेको विधानसभा की मेंबर सिंह दी हथेंग नना मियाम ने बहुत थादा दुन खल्ली अदुगा विधान परिषद की मेंबर सिंह दी खरा अमना इनडायरेक्ट खल्ली खरा ना गवर्नर ना नॉमिनेट तौरगा हापी
2: बाबा मी अमन ने हेक्टा मेंबर ओइबे याब्र
0: स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर ओइगे हाइरबदी लेबाक असी की नागरिक ओइबग लोइनना मशाग चही कुनग मंगा दगी तादब ओइगदा अदुगा लेजिस्लेटिव काउंसिल की ना सही कुंत्रा दगी तादब ओइगदा अदुगा ने लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबर सिंग असी दी सही अनी अनी दा मखोय की ताम लोइसली को मखोय की दी असेंबली मुथत पगा हाय बदु कुम बलेते
1: अदो बाबा मीना सुम प्रेसिडेंट रूल काइन हाइना ब मताएबा अदु न कय ओइ दुइनो
0: ओ आइ खोय ना गवर्नमेंट सेम्बा हाइन हाइनसे
1: आ
0: कोई की मिहुत हाय बदी मियाम न मिखल द खलक लबा मिहुत एमएलए सिंह याम न लैब पार्टी नत्रगना मिसंग सुंगसिन न दुना मसिंग याम न लैरब कांगबु दुना गवर्नमेंट सेमिनी असुमना सेमली ब गवर्नमेंट दो मरम अम नत्रगा अमना मरा चेन लैंगा पंग मोइदब मतमदा प्रेसिडेंट रूल हाइव द थमी
1: ओ
2: बाबा असेंबली फंबा गहाई दुना करिनो
0: आ हाइगे अदु सुहाइगे असेंबली फंबा हाइबसी असेंबली द मसिगे मेंबर सिंगे मिफम पांथोक पनि मिफम मसिदा मरु ओइना स्टेट अदुदा निंथी जन लेंगा को यानन ब आइन शेमबनी अदुना असेंबली गी मेंबर सिंगबु लॉ मेकर नी आइन हाइनरि बनि को स्टेट की सही यमदा सि नगद ब पैसा सु असेंबली गी मिफम ना आया बपि अदुग ने असेंबली गी मिफम से अमगा अमगा था तरु खनन बया देखो हाइबदी सही अमदा यामद्रबदा असेंबली मिफम अनिरक्ति लेगनी हाइबनी असेंबली मिफम फमद्रिगैदा मेंबर मयामदु की मरक तगी अमबु स्पीकर अदुगा अतोप अमबुना डिप्यूटी स्पीकर हाइन खनगनी को स्पीकर हाइबसिना असेंबली की मिफम मदुदा मिफम मपु ओइना वायन बगी थबक तवी अदुना महाक्ति पार्टी अमदगी खलकलबसु स्पीकर ओइना मिसंग मिखाई नायबे याते अदुगा ने गवर्नमेंट पाइरी ब माइकई दा चीफ मिनिस्टर ने लुसिंगी अदुगा ऑपोजिशन की माइकई दना कदो ए खंबरा ऑपोजिशन लीडर हाइब अम लेगनी को मान लुसिंगनी ऑपोजिशन लीडर से मिनिस्टर अम की थाक सब मानन लेको कौन को यहां से ऑपोजिशन लीडर से करी के माने बा मिनिस्टर अम का गुड
1: अदो बाबा लेजिस्लेटिव असेंबली हाय बसे करी करी पावर ले गया
0: लेजिस्लेटिव असेंबली हाय बसी पावर याम ले सेल थुम सिजी नबगी कंट्रोल तोबा laibakki president khanbagi shakti member singi privilege ngak nanabagi shakti atai su leiri samna state amagi mara tappa lengak ama lei hanna ba khona bata tobya ba tobagi shakti do madu lei ko
1: aduga baba state amada governor hai ba ma su lei hai ma di mantri sunate hai adu ma gi mathau sibu kai no ba
0: baba hai ge governor hai ba se president na ne sahi manga manga gi oina happy ko maksi state laiba kendra gi mihutni hairbasu yai state amada executive haibasi governor amasung chief minister namako koiba council of minister leiko masida governor na constitutional head oi mangonda executive authority gi title mi amabu president na state aman natraga amadagi henbagi damak governor happy haibadi governor amana state amadagi henna charge pubiya hai matam matada
1: khangabra
0: maha ki tamna chahi mangani ko satnabi oina governor ase mahakna thabak purugadori ba state adugi mapandagi hapnai haibadi se khudamoina hairabada koi manipur ki governor si amapandagi lag oiridana ko ngaduni sumai todana apandagi hapnai ba council of minister ki pautak matung inna governor na thabak tawi mangonda executive legislature amasung judicial ki power ngamnamak lai chief minister ki pautak matung inna minister sing hapa ngami asida natana advocate general state public service commission ki chairman amadi member sing su hapa
2: baba assembly da magi power delay bro
0: eh assembly da governor ki power yam lai mana assembly mipham kaubanatra ka matam kakta na yaitho pangam ko chief minister ki recommendation matung inna assembly muthat pasungami judiciary the su magi power yamna lai miyat taraba bondi amabu state law gi makhada mahagna miyat kakthaba ngami haibadi matam handhan bangami haiba ko state ta constitutional crisis tholakpa matamda mahaki warep laugja bangami asida natana assembly the pass tauraklaba bill ama mahagna ayab piraga ek oina chanahanba natragana president da yengsin binanaba thaba sunami
1: baba aduji baba na haibiri basing sina governor gi power oiradi mantri singi mapham di gadai de leigane
0: adu su haige ko state ki council of minister leiri bise chief minister na khwai de ki makuk ni and jo jikta haigre governor na constitutional head oiraga chief minister na executive head oi aidana ko chief minister na magi minister sing kana kana no oigedage haiba warep silawi ko minister oiraba singi pugadaba mathau mahakna pi ko minister sing da piriba mathau hondo hongjin tawba ngami minister resign tawhan baso chief minister na ngami karigumbada minister amana resign taw haiba yadrabadi mahakna haibadi chief minister na governor da hairiba minister ado mathau lokthok khanba haibadi dismiss tohan basu yai aduga ne chief minister na magi cabinet mipham preside tawi ko aduna cabinet mipham da putokadori ba agenda sing ase chief minister na control to atar ba
2: baba
0: hayo
2: assembly mipham da su chief minister na khwaidagi makok ta laibra
0: assembly manung da di speaker na khwaidagi mathak ta lai ko assembly da putokadori ba agenda sing speaker na chief minister ka tanar ga lepi maru ba policy mahang na lautho pa yai member mayam sauna rak padana ingthana ba akak na ba relief khara lautho pa su ngami aduga chief minister na assembly da maki mla masing he na leri ba makhai government amsung council of minister gi lusing ba oigani ko aduga karigum matang da makhoi gi mathak ta no confidence motion thangatuna masing ayam ba member sing na saugalli saugatte haina yengna ba su yawi adugum ba matang da masing hanthana leri ba dine government pai bu de gi to patai
1: aduga baba state gi council of minister sing gi mathau se kari kari oigani
0: o minister sing na ne lebak miyam gi yaiphana na ba policy program kayam se me adugum ba policy program mayam do sanna hanna ba pa nagani aduga loina na state ki ain adagi kendra sarkar gi ain sing mapham matam chana chana hanna ba hona gani asigum ba thabak sing si pangthok na ba hona ba da ne matin pangna na ba governor na officer achobu sing appoint toiko aduga government bill sing puthorak pada minister singna bill sing ado shogat kani
1: ado baba ai niam khangning ba ma leire
0: hayuni hangune hamuni
1: baba na ngasai dai takpi ba

नंदलाल रोई की मयेकता समरे लापम नबजनरन सकपा इसे सिबो मुख लाइमियुम राधाचरण शर्मना गीतरदा सैसकली तामिनसी

नाइजब थमुई फिल्म सिदगी आरबिन मदि पुष्पारानिगी खोंजेलदा बिनुरंजन ओइनामन सेरिंगबा टोनी एहिबमन सेरांग बिसै ताबिदे मथंद लखचरी तोरै फिल्म सिदगी माधुरीगी खोंजेलदा खाइदेम इमोना सेरिंगबा रणबीर थौनाना सेरांग बिसै।

0: खुलाई पाए तन ओई के तमने आबे लई जाई मसीब पृथ्वी की इतिहास ता भारत की महात्मा गांधी जी ने चुकाई कराए
1: चुकाई कराए
0: नन कोऑपरेशन मूवमेंट मपुंग फान लमदम सिने की ब्रिटिश साम्राज्य के फिरान चिक कराए अदुबु पृथ्वी पुम नमक ता ऑब्जेक्ट डिटेक्ट लई जाई लई लम लई जाई असी गुमलम मतम मसीदा खुद खुलाई पाई दिन पानम ममगी नमक जक्शन लिबा कालुप कालुप सिंह मरक तकी पृथ्वी पुम नमक ता आरान पम बिना पजा म्यां की शांति चुकाई ब शक्ति लई ब मी सी बे आ खुलाई पाई सिंह बु टेररिस्ट ऑयल लवले रे टेररिस्ट पुम मरु पंग न मुत पाई बसे पृथ्वी पुम नमक की वारन में
1: होजेक होजेक लमदम सिंह संगम सोगम सोग लगली ब खुलाई पाई ब निंग तम की मिंग द लेबली ब थवांग सिंह असी प्रजा म्यां न पिसा तौब की मतम ओय रे पाली ब सरकार सिना प्रजा बुंगा पिसन बी बद खुदों थी वो रख ली बसी सरकार नाक ते सुंग हम थोक ते सरकार है बसी दा प्रजा आई खोई यावरी बने आई खोई आई खोई आई खोई लोई लंबू है बसो मिखा पुन बबू है बसो माने इंतम बले भाग पुए है बसो लंबा मामने शांति ले इतने हिंग भाई बसे प्रजा ने ज्ञान ताद बद की नहीं प्रजा आई खोई मिखा तोले से सरकार ही मतों है बसी प्रजा आई खोई बुंगाक सेन मनी लंबा मामने शांति ले तबले बाम ओए भाई बसे प्रजा ने ज्ञान ताद बद की नहीं प्रजा आई खोई मिखा तोले से

0: 那所啥呢是汤比利都一来来呢啥呢不要吧还带可以烧热干的书那这个呢瓦热不么等的书瓦可是顺太给的那把 control 都不能把所啥叫一张张吧啊么可等我啥呢汤比利嘛个的要弄来这个你个啥
1: radio 的 technique 大不是给等 challenging 的我也都不一块呢快的给来来呢都不要吧是 any important 他不那么都让带的瓦可是大事那个都不能把是要弄么入哎都那那还等后边后边都不给么好的 midway 是那个खुबाक ना अतियारो मों खत लगा फम्मगा सोर सांग न होंदो होंजिन तौ बीबा दुगा आइगी वखल अटेंशन पुम बसे आइनो होंदो होंजिन तौ रिब सोर द थम्मगा सोर गी लंबी सोर गी चांग सोर गी स्पीड सोर गी टेंपरेचर से मसक खंगदो अगा अटेंशन से साइथो खंदना होंदो होंजिन तौ रिब सोर द वखल थम्लगा मिनट अनिया हुम खतंग फम्बदा काम ओइबा माइंड मा फंगनी काम ओइबा माइंड दी बुद्धि थोए डिसीजन लोबगे क्लैरिटी अमलाए तो वाखल सि टेंशन लेरग दी बुद्धि मम्मे ए डिसीजन लोब द कंफ्यूजन लाए दुना सिगि सोर गि साजेल से इचम चम मगसु यामना प्रैक्टिकल ओइबनी थाइन दगे दम सिजिन दन लाख पने खोय हल्लमना साउद्रिंगै दा सोर सांग बतरा रख होलु सोर चनिंग तान होलु का हायरम मिसे यामनो प्रैक्टिकल ओइब पोट अमने सोर चनिंग तात्रिब मखै माइंड चनिंग ताब ओइ थोकते हाइब द हाइमन ब थोकलो दुग सोर चनिंग तान बंग मगदि चरांग नब कया लेरग सु काम ओइना आइ पुंसी हिंग बंग बगि पांबय म फंगे
0: अखोगि हौख्रबा पुंसी सिदा थोकि ब थोकदोक सिंग अदगि अखोय हौजिक थोकलि ब सिंग असिना अखोय द हेन रिग्रेट ले हन बा अदगि पेन द ब पोखन ब सि मयाम सिनो दि मियोय ब से साउनिंग ब हाय बदो पोलक दरि बनि मसि पोकले इब से मसि आयाम बना वाखल लेता बंगम जिबा नहा सिंग सिदा आयाम बना थोकले मसि करम ना अखोय ने हेंडल तो ब या बगे हाय बदो मदु मसो ओजाना थंबिरम
1: पुंसी द निंग ब काइब रिग्रेट हाय ब से करम ब मतम द थोए ने खन ब मतम द ऐन तौरीब थबुक तो ऐन 100% तौ होद्रबा अदु अरगदि पुंसी द रिग्रेट लेबगि चांस यामन लेय एनीथिंग ऐन तौ बसे 100% तौ रगदि रिजल्ट्स सोइदन फजगनि बाय चांस करिगुम ब रिजल्ट्स सि फजद्रग सुने ऐगोन द रिग्रेट लेय रोये अदु न तबिदा ऐन तौ ब थबुक से माय वन सि लगा 100% तौ होद्रबा खंग न खंग न 100% तौ होद्रगदि मसिगे ख्वाइदगी फब एग्जांपल लमैन न थेंग नखिबा ममांगी ओलंपिक तै खोइगी मणिपुर गी मीरा भाई ना मान मेडल फंग बंगम दबदु टीवी एंग बाय खोइदी कपनिंग ब फाउ खिए अदु ब मादिंग ए हाकी मतुंग द पृथ्वी गी ममांग द थोगा ग मीडिया द आई एम वेरी हैप्पी विथ माय परफॉर्मेंस इन हाई बंगम खिए मान 100% तौ थोखिब दु न दो हाई बंगम खरिनिको अदु न अम द्रग द ममांग द ब्रोंज फंगम बाय हंद कैम द मेडल फंग द्रेना कप ग नुंगाई तने लेरम ग दुरिने दुगी मायोक न बद मान थोगा ग पृथ्वी गी ममांग द मीडिया द I am very happy with my performance in Haibangam Kibudo. Si khwaide ki phajaba example amane ma 100% to thokragadi punsi da regret laiti. Adu nai na ha sing da haijaning basi regret laita ba punsi ma hinge haragadi anything to boma tamda 100% to bangam ba. Haibadi wakhal tha tharaga mind chai thokhandana to bangam ba aigi full capacity du to thokpa. Adu eragadi regret se sum sum han tharakani ko. Regret si aina तौ हौदे तौ रंब याबनी हाइब खलक पतान जादत ने रिग्रेट लाइसे अदुन त्रगदी रिग्रेट लाग ने सांस इले लेते होय पुंसी दी चैलेंज ने आइन पाम ब फंगदब कया मे याउ ब याई अदु अरगस अदु गुम मतम दु द सिगे विजन सि लेरगदी आइगी थेंगनरी ब नेगेटिव ओइब फिबम दुन हुम ग पुरोय द्रा हिना खंजे एना 100% तौ ब मी से सिगे पर्सनालिटी से आमने अट्रैक्टिव ओइब आमने कैरिस्मेटिक ओइब पर्सनालिटी म फंगे अदुन अखोई नहा सिंह सु इंटरव्यू गुम कई गुम चटपद मयाम न पाम गद ब पर्सनालिटी अमा डेवलप तो गे हरगदी एनीथिंग तो बसिद 100% तो ब दैखोई दी एथेंसी दी थबुक मचानी हो जिक सु तो उद्रस वियाय एंग इंपोर्टेंट ओइ ब थबुक लाक पद 100% तो गे हाइबगी वाखन लो न म थमे दु ब आइबो हाइजो हरगदी थबुक मचा मचा द 100% तो ब हैत ब मिसे अचौ ब लाक पद सुन तो बंगम हो र रोय देन एनीथिंग थबुक मचा ओइ गे वयो अचौ ब ओइ गे वयो ऐन तौरीब थबुक तो द 100% माय वन सिल लगा आइगी मैक्सिमम कैपेसिटी दुदा ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ.
0: ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄꯗꯣ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯑꯆꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯍꯩꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ. ꯈꯔ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ, ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯗꯤꯕꯨ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯕꯨ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ. ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕꯒꯦ? ꯃꯗꯨꯝꯁꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ.
1: ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯅꯤ. ꯉꯁꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯦ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ. ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃꯁꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯗ, ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕ ꯍꯩꯇꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ. ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯥꯏꯖꯧ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ. ꯅꯣꯂꯦꯖꯄꯨ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦ. ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯍꯩꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤ 10-20ꯒꯤ ꯆꯥꯛꯁꯨ ꯏꯂꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯡꯉꯦ. ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯆꯥ ꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃ ꯂꯣꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯁꯨ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯀꯥꯏ. ꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯛꯅꯤ. ꯅꯣꯂꯦꯖꯄꯨ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯂꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯋꯦ. ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯂꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯂꯥꯏꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯏꯐꯪ ꯐꯪꯗꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯕꯣꯛꯇꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯗꯒꯤ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ. ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯃꯤꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯗꯗꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯑꯦ. ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯏ? ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯥꯏꯖꯧ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯅ ꯌꯥꯝꯕ, ꯃꯇꯝꯅ ꯇꯦꯟꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤꯅ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯕ. ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯀ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩꯌꯦ. ꯁꯤꯒ� ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯂꯣꯟꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏ, ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯕꯇꯅꯤ. ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯛꯂꯣꯗꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯨꯡ 20 ꯈꯛꯇꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯦꯅꯤꯄꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯅꯤꯄꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤꯅꯤ. ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤ ꯋꯥꯡꯉꯒꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯃꯣꯁꯟꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯩ. ꯍꯔꯥꯎꯏ, ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ, ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏ, ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯣꯛꯏ, ꯕꯨꯗ್ꯙꯤ ꯊꯣꯛꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ ꯁꯦꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕ, ꯏꯁꯧ ꯂꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ, ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯂꯣꯟꯂꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯡꯇꯤꯖꯥꯏꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯌꯨꯛ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕꯒ ꯃꯥꯜꯂꯝꯃꯒ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯌꯧꯔꯛꯄꯗ ꯍꯤꯡꯉꯨꯗꯅ ꯀꯩ ꯀꯥꯟꯅꯒꯦ ꯀꯩꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯤꯒꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯌꯦ. ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯅ ꯁꯥꯟꯅꯩꯌꯦ. ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯏꯃꯣꯁꯟꯁ, ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯩ. ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤꯁꯤ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯏꯃꯣꯁꯟꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤꯁꯤ ꯋꯥꯡꯈꯠꯍꯟꯕ ꯍꯩꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯆꯪꯉꯤꯕꯁꯦ ꯏꯂꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯌꯦꯡꯗꯗꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯅꯠꯇꯦ. ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ ꯍꯟꯊꯈꯤꯕꯒꯤ ꯁꯤꯟꯇꯣꯝ ꯑꯃꯅꯤ. ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯧꯔꯒ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ. ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯕ, ꯇꯨꯝꯕ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯁꯪꯒꯠ ꯇꯤꯟꯕ, ꯑꯐꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯂꯩꯕ, ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕ, ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤꯁꯤ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯑꯦ. ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤꯒꯤ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛ ꯍꯣꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯣꯔꯁꯦ. ꯍꯣꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯁꯣꯔꯅ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ. ꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯩꯔꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤꯁꯤ ꯋꯥꯡꯉꯒꯗꯤꯅꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯅꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯠ ꯑꯃ ꯐꯪꯒꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ, ꯃꯁꯤ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏ, ꯄ꯭ꯔꯥꯅꯥꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤ ꯍꯟꯊꯈ꯭ꯔꯕ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯕ, ꯍꯔꯥꯎꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯣꯔꯒꯤ ꯁꯥꯖꯦꯜ ꯈꯔ ꯇꯝꯃꯒ, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯈꯔ ꯇꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯒꯤ ꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ, ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯨꯗ꯭ꯙꯤꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯔꯞ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯅꯤ? ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ, ꯆꯍꯤ 10 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ, ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ.
0: ꯑꯗꯨꯅ
1: ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯊꯨꯅ ꯊꯨꯅ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯜꯂꯦ, ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯒ ꯂꯩꯒꯜꯂꯦ. ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ 90% ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ. ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ 10% ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯁꯤꯅ 90% ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯒ 10% ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯅꯔꯤꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯕꯇꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯈꯔ

tabiri kungang gi thoram satha jari ba kangla channel gi thoram paringi pungni pan tab matam da thamjari radio lila asang ba nongjabi aroi ba saruk lila sanabi gi da ba rup raga gi lila kangbu pungni pan makhai lanthok chagani naharol gi khonjel thormasi da administrative sector bu nahasingna career option ama oina kari gi thamgadauri bano haibisida expert oina lengsing bigadaba md abjal khan faculty dr ambekar center of excellence manipur university and creative circle ga unaduna warisaba moirang tem promote devini shakpa khongjom parba tahan jagni nuidang pung mapan minute taramanga pung mapan makai thamjari mai paklaba lomi thormasida dragon fruit thawada mai paklaba lomi singjamai chinga makha da leiba posangbam sanjoiga aikhoi gi mihut mm sanaiga unaduna wari saba thoram puthokpa raichanda chingtham sms ama di postcard ki khuthangda miyamna khanbirakpa manipuri film sei lanthok chagani ngasi nuidang pung tara खंगन जवा आकाशवाणी इम्फाल की म्यूजिक ऑडिशन की दमक ऑनलाइन की खुथांग फॉर्म थाजन की बसिंग खंगन जरी मधुदी बी दी बी हाई ग्रेड कानी ऑडिशन लागली जून की तंग निपान हौजरगनी लागली मे कुमंगा मे कुमाफन फाउ की मनुंग इंडियन म्यूजिक सेक्शन अयुक की पुंग त्रामथोई की पुंग मरी फाउ की मनुंग एमी कार्ड लोबीरनब खंगन जरी

0: आकाशवाणी इम्फाल गांगोम किरण पाव पाजरी अहम धमर पाव मुख्यमंत्री युमनाम खेमचा साहित्य कला संस्कृति नाक सेंबी खुनाब लमजिबद चाउन मतें पाली यू एन सी म्यूट कांगना मुख्यमंत्री युमनाम खेमचा उन्दुना फजन मई तरुक थादोहब तकसीख्रे तरम सुब स्पीक मेके इंटरनेशनल कन्वेंशन सरुक यागदब मणिपुर टीम इम्फाल के लोक भवन राज्यपाल अजय कुमार भलान लम थाक्रे तरम अपन सुब रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपॉइंटमेंट लेटर लिसंगखोख्रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो लैवाक अनी मरी हेन फगत हनब न्यू दिल्ली वारी सानख्रे मुख्यमंत्री युमनाम खेमचा हैरी साहित्य अखो कला संस्कृति नाक सेंदुन थम्बत नतना खुनाब लमजिब चाउन मतें पाली इम्फाल की मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी के ऑडिटोरियम राज्य की डायरेक्टोरेट ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन सिंधुना पाठ मणिपुर स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर लिसंगनी कुनमरी एंथोपगी थोरम मुख्यमंत्री हाई हौब सही अनी अहम अरब फिवम राज्य सेमितों अखंडन नौम के सूर चाब मई चाउन सैथे पीरी मियाम खोज चंगी खुनाई मिचत्थिनी सेमितों सोहब खोज चंगू मुख्यमंत्री अपील तौकी शांति रक्षा की मांग फोदों मुख्यमंत्री हाई राज्य कांग्रुप मसल की मरक्त नुसी चाब की फिवम हंजन हम तंगाईफदी पुनः हों राज्य शांति चौखट की माइक पुरुनब हर मुख्यमंत्री हाई
1: स्टेट से इकोनोमी सोख्रे सरा ताल चादब फंगीब चैथे मरक्त करीब तंजा सरकार सौंग बन हेक् प्रजा सिंह पेंदब सरकार सौबम तुय एजुकेशन तौब प्रजा सिंह स्टेट की इकोनोमी सोब पुनम की खल तौबी कोई शांति हंजलन नतना स्टेट से चाहप यारो अद तोहान तोहब कंथ्रा मरी खुंदाब लमी मसी चा हिंगीब नतना चौखप यारूदबनी वरुनब क्या लेरु वरी सानर मनपुर से इंतब मनपुर पुरपद मैं पुनमें पाबी
0: थोरम सरुक याखिब आर्ट एंड कल्चर की मंत्री खुराइजुम लोकेन सिंह मणिपुर स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर लिसंगनी कुनमरी एंथोप की थोरम खर थेंथकीब असी मथंगदगीदी मतमचाना पांगथोप गमनना होनारगनी अईब अईबसिंगना साहित्य की लमद लौरीब थौदांगसिंगबुसु मंत्री ना थागत फोंगदोकी नसीगी थोरम मणिपुर की संगनायरब अईब अईबसिंग कांगजम इबोंगन सिंह अरामबम ओंगबी मेमचौबी अकोयजम जितेंद मना खुचिनकी यूनाइटेड नागा काउंसिल यू एन सी की म्यूट कांगी मुख्यमंत्री युमनाम खेमचा सिंह इम्फाल मुख्यमंत्री के सेक्रेटरीट उन्द्ना शांति रक्षा की फिवी वरी सानख्रे उन्नब उप मुख्यमंत्री लोसी डी को गृहमंत्री गोविंद दास कौथौजम नागा एम एल ए सरुक याखी यू एन सी की माइकी नलुप प्रेसीडेंट एन पौजान गोलमेन लुसिब म्यूट कांगू सरुक याखी उन्नब यू एन सी की माइकी कांगपोक्पी जिला की कौनसा खुलद की फादन पोखिब मई तरुक की मरी मखों थीब सरकार तकसीखी मद की पाखुम मुख्यमंत्री हाई मई तरुक फजनखिब की केस एन आई एद सिरगनी मे तरहद कांगपोक्पी जिला चर्च की लुसिब अहम हाथीब की थोड़ा एन आई एद थीजिलहब सिनख्रे मरग से फजनखिब मईद अशोम कन्नब मे तरह मरीदी ऑपरेशन चतब लेप्री फजनखिब मई अशोम थादोहब होनबद कंगेंग पाबीब मुख्यमंत्री अपील तौकी पाव की मरक्त अतें ब्रेक
2: खंगजब राज्य की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की मखादा लौगदौरिब कंट्रेक्चुअल स्टाफ सिंह की अईब चांगयेंग हयेंग पांगथोकलगनी चांगयेंग असी इम्फाल की जीपी वुमेन्स कॉलेज इम्फाल कॉलेज महाराजा बोधचंद्र कॉलेज सीसी हायर सेकेंडरी स्कूल वंखई हाई स्कूल चुराचानपुर की चुराचानपुर कॉलेज सेनापति की सेंट एंथनी कॉलेज उखरुल की उखरुल हायर सेकेंडरी स्कूल कांगपोक्पी की एलिट हायर सेकेंडरी स्कूल पांगथोकनी सेंटर अखनब पोस्ट की चांगयेंग अयुक Numit Yungba Matunga, Akanana Pankokani. Candidate Singna Examination Center, the Changing Hogotaba Pung Amagi Mamanga, Masagi Admit Card Amadi Mari Lainaba Identity Kangdokpa, Document Sing Pai Dunayorokadabani. Akupa Marol Department Asigi website www.socialwelfare.mn.gov.in Dagi Kangba Yagani. Kangan Jariba Social Welfare Department, Government of Manipur.
0: Tabiriba Pawasi Akashwani Imphal Dagini. Nongsu Bengalgi IIT Kharagpur da thasi kunmangari kunthramathai phawo pangtokadaba taramathoi shuba Speak Meke International Convention da saruk yagadaba Manipur team ngasi Imphal ge Lok Bhavan dagi Rajyapal Ajay Kumar Bhalanalam Thakre Manipur gi team aduda Mantri Pukhri Amadi Kaithelman Bidalaiba Assam Rifles Public School Singh Amasung Manipur University of Culture gi Mahiro Singh Amadi Oja Singh saruk yari Lamtha Dringe ki mamang da mihut kang bodu gawari shanabada Rajyapal Nahai Convention Asina Bharat ki ina khulaba kala sanskriti sing punna khami nabatana tana mireba ki tongan tongan ba kala sanskriti sing gi matang dasu ningthi na khangbangam lagani Thoromadu da IGR South Assam Rifles ki DIG Mapun Sub Sector Assam Rifles masung makuk thongba official kaya saruk yaki India Meteorological Department Imphal Center Nahari Manipur ki jila pumnumakta hayang nong churabayai Center asina thadorok pasirolamada hai hayang jila kardadi akak araw yongna mayai urappa changda nong churabayai Mathang numitana Raja Sig jila nipanda nong churabayai jila singadudi Tamenglong Senapati Ukhrul Kamjong Tengnopal Chandel Chorasanpuramasung Pherjol jila singni Kangpo Pizila the Tasik Tarahom de Tokiba, Irang Atuki Matunda, Pazinduna Lariba, Nagapur Kimusing Tadora Kadabani, Hibadabi Tauruduna, Langwitong United Club Organization, Lampal, Langwitong Nasinduna, Langwitongi, YGSC Playground, Nasi, Wakat Mipum Satakre, Wakat Mipum Aduda Sarkia Kibusina, Apun Muna Pangalni, Aikoi Amato in Punsilasi, Aikoi Santi Pami Amasung, Manipur Yapun Gisakum Kaibiaro Hiba, Play Karching Paiki. Zone and Education Office Wangwegi Midyang Makada Kwaketil Laiba Regular English School Gi Mahiro Singna Mayai Kawadrak Na Mahiro Singna Piriba Saiteng Haibi Hiramda Ngasi Rally Ama Chatkre Raja Sarkar Gi Group C Amadi Group D Gi Thabak Lobuda Homeward Personnel Singh Sit Khaktuna Thamnunaba High Court of Manipur Namari Lainaba Singda Aiva Serol Thaduna Khangan Kre Hiramma Singh Matangda Manipur Homeward Employees Welfare Association Na High Court Thangalakhiba Kwa Wakat Amagi Matung inna Court na Kanaraba Matung Sayol Ahongi Manungda Raja Sarkarna Pakum Pirna Bakangan Ki. Wakat Asi July Kuntareta Makatana Kananaba Matam Lepkre. World Environment Day Gamari Lenana Kaksin Kono College Tengasi College Thake Symposium Amapang Tokre Thormadu Rajgi Environment Masung Climate Change Directorate Ki Makada College Asina Sinduna Pang Tokibani. Election Commission of India na Mikhal Niyam Chumna Pangtok Nabagi Damak Sahi Asida Pangtok Kadaba Special Intensive Revision SIR Gimataang Da Block Level Agent BLA Singhoiba Training Program Amangasi Thobal Athokum Dalaiba Congress Bhavanda Pangtokre Training Program Adu Thobal District Congress Committee Gimit Yang Makhada Pangtok Kibani Tharomadu Da Kendra Tarukki Block Congress Committee Gi President Singh Da BLA I Card Singh Su Yantokki PM Srigi Makhada Namini Chumna Lamlai Higher Secondary School the Satharakiba Mathematics and Science Circle Exhibition Gasiloshin Kre Exhibition Aduda Wangangwada MLA Komantabam Ibom Chanahai Mahiro Singna Tungi Punsida Mai Pakpami Amamum Oibada Taksi Kasi Kangmatangai Fadi Apava Kunai Amasyambada Mahiro Singh Chaurba Thaudang Lai Hainasu MLN Makhatana Fongdoki Mayang Imphal ki Phawaksaw High School da ngasi maihuk langpok thorpu matam da kamdung na thyang nagani haibagi matang da mok drilamasung miyam da khangan bagi thorum ama pangtok kre thorum adu mayang Imphal Fair Service na sinduna pangtok ki bani. United Mongoloid Imphal ki kunitoi sibu mapok kuman thorum ngasi konang thaba University da pangtok kre thorum adu da University asgi Vice Chancellor Professor and Joy Kumar masung Manipur Human Rights Commission ki hanagi member ngangbum nongyay na singbu maroiba miyoi kaya saruk yaki. Indian Red Cross Society Kaksing District Branch Haudokiba Sahimari Mapung Park Pagamari Lenana Idan Tobi Thorma Mangasi Kaksing District Hospital of Fangtokre Thorma de Punamio Kulumdoida Idan Toki Pogimarakthana Atenu Break Amamo
3: JJ Foundation ki unit ama oiriba JJ School Montessori ki maka chatharak po oina JJ Institute Luxury Academic Session Lisingani kuntaruk kuntaret ki oina NEET amadi class 11 amadi 12 science BOSEM amadi COSEM animaki foundation course megi mari subachayol dagi haujeragani class 11 amadi 12 ke foundation na nungthal ki pungmari dagi taruk kamine ne phumanga phawbani aduga NEET kina ayuk ki pungmanga dagi mapan minute 30 phawbani meritorious students singi scholarship affordable fees amadi installment mode of payment ki khudong sabasu pijari fully air condition matamga chunaraba study hall makal khuding ma ki facilities leiraba matik charba girls hostel loinana khangalaba mahiroi manga da 50% fee concession ki khudong sabasu thamjari ngasimak contact tobiu JJ Institute Quaket Hill Thokchom lekai near Punjab National Bank
0: Akashwani Imphal gi pau tabiri Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi sarkar ge thabak singna laibak asigi nagarik singi punsi maing fagat han bada maruwe ba thawdang lauri. Video conference ge kothang nga si pangto kiba tarama punsuba rozgar mela ge tharum da wangang na duna Pradhan Mantri na hai laibak asina karma yogi singi mapam da asir pathaja ba thamli. Makoi na kathok pagalona na pangto pa thabak tharum singna laibak asibu sakut pagilambi da lam jinga dori bani. Mahang na hai bhar ki naharul singda Tabak Piba Hingat Nabamashung, Makoy Haito Shing Toybakaya, Malayumiam the Utpungam Nanaba, Sarkarna, Kanabam Yang Changli. Levasik Tuan Tuano Pomniputareta Pangto Kiba, Taramapun Suba, Rose Garmela, Shidanong Tabak Kalaban Naharon, Listen Yankai Mato Hanbada, Makoy Appointment Letter Sing, Yantoki. Pradhan Mantri Narendra Modi Amasung, America Secretary of State Marco Rubio Anina, Nashi New Delhi Gi, Sheba Tritada Unaduna, India US Comprehensive Global Strategic Partnership Ki Matang Amasung, Malayam Gi Aibuapum Kaya Gi Matang Da Kanakri. Pradhan Mantri Office Na Thadar Apu Warol Lama Da Hai, Sri Rubio Na Pradhan Mantri Narendra Modi Da, Lebak Ani Gi Marak Tengak Sel Technology Lalol Itik Yau Na Lam Kaya Da, Tengbang Pina Bahengan Annam Gi Matang Da Lairi Ba Piyam Singh, Pau Dam Duna Khangan Ki. Hauzik Sanabagi Pau, Mangsa Tabam Premanandadagi.
4: Humfumunga Suba, Sarchurachan Singha, KCSI, CVE, Memorial Football Tournament, Lising Nikuma Kunturki, Nasi Sanakyo Met Samada, Eastern Sporting Union, Sagolban United Wupanzil Aniamada Toikre, Atoba Met Samadana, United Youth Tanapopi Amadi, Social Welfare Club, Panzil Ani Nichaneduna, Drew Oiki. Anisuba Maichau Samro Chigong Trophy Open Football Tournament ki ngasi sana khiba quarter final da SYDA Pungdong Bamna Milan Joy FA Bupanjal Amasino da thoiki SIC Singa Ahanba KRC Trophy Lising Nikuntru ki final jangkre ngasi sana khiba Ahanba semi final da SIC Singana Real FA Top 5 Bupanjal Amasino da thoiki NCC Ekta Cup for Under 17 Boys listening ni kuntaru ki ngasi sana kiwa Matt Singh da KIYC na GFA Bupanjil Tariat Amada IFA na KAFA Bupanjil Anishino da Amadi KFA na Pandam FF Bupanjil Ahum Amada Thoiki Manipur Handball Association ki bindiyang makha da chathariba Nimfunifan Suba State Level Junior Boys and Girls Handball Tournament ki ngasi sana kiwa nupa ki quarterfinal da SSC Kurai na NSU Kumalampa Bupanjil Taramanga Tarani Thoi da Thoikre Nupi ki quarterfinal da KVWA Mayang Imphalna, SSC Kurai Bupanjil Kulhumdoi Tarani Thoida Thoiki. Manga Suba MNCA Senior Women's One Day Trophy Lisingani Kuma Kuntruki Ngasi Thamaiban Thao Ground Sanakhiwa Match Samada Sedo Thamaiban PTRC Patsoibu Ran Chani Taratareta Thoikre. Amaromda Marishuba MNCA Men's One Day Trophy Lisingani Kuma Kuntruki Ngasi Kudeban Lampak Chauthong Da Sanakhiwa Match Da PCC Mayai Koibina Blue Hawk Krai Lamlongbu Wicket Amada Thoiki. Model High Secondary Amasung Oriental College Ground Sanakiba Mets Amada RCA Lilongna Cyclone Thamaibunbu Run Chama Kunipanda Amadi Khangabok Patri Cherapur Public Ground Sanakiba Metsana AKSDO Khangabokna PTC Pasoi Patri Bu Wicket Mangada Thoiki. Kuntruk Suba Arambam Samarendro Ningsing Kumon Likkam Knockout Kendra West Open Kang Tournament Lisingani Kuntru ki ngasi sanakiba match da LSKB Wangoi Kangkhut na SSU Singamai Kangkhut pu panjil taramanga tarama thoi da thoi ki kiran.
0: Aroi badamaru eo pao amohanna. Mukhyamantri Yumnam Khyamchan na hairi sahitya na kala sanskriti bu ngak senba madi khunai bu lamjing bada chao na mateng pangli. UNC gi mihut kang bu amana Mukhyamantri Yumnam Khyamchan ga unaduna phajan kiba miyoi taruk thaduk anna bat takshin krei. taramatoi suba speak make international convention da saruk yagadaba manipur team ngasi imphal ge lok bhavan de rajyapal ajay kumar bhalanalam thakre taramapul suba rozgar mela da ngasi pradhan mantri narendra modi na appointment letter lising yang khai matoi hane yan thok kre amshung pradhan mantri narendra modi amsung america ge secretary of state marco rubio na laibak ani ge mari hana phag annaba new delhi dawari sanakre paulo jare

0: याद रहे ओजा याद रहे ओजा सिंह मनिंग तंखन रक्तना अमत्ता याद रहे अनोव प्रिंसिपल नसु लक्षण मंगमद्रे
1: सर
0: अदुना ओजाना प्रिंसिपल ओइना अमु पुबी मधुदा लाकवा फफत्त पुंबगी दायता सेक्रेटरी एगी स्कूल मुटपन त्रगे हिंगबगी वाफम लाकपदगी ओजागी सस्पेंशन ऑर्डर दो रिवोक तो जरब से ऑर्डर आई हो रे ओजा
1: आईबो अमुक प्रिंसिपल ओइ खिगद्रने
2: ओजाना आईबो थेम नौ दुना तौरी दो काइम त काना रो होजिक आई मौ ओइ रे लाइक मखा तम थनबगी हक तो लोइ खरे होजिक ती आई नो ओजागी नफम दगी फंगफम थोक प हक पुंब दो अदु ओइ न पामे
1: चुमी मौमन मपुर बेगी मफम दगी मागी फमफम तो पहक तानबा हमसानी मदो आइना पीदब सुंगम तौब तबु महिम सिंह निंग थीन हैदुन मतिक साबी अम वइबिंग अमद्रिबि नंगोंद आइना करम न हक सिंह दो इराय लाइन हेक्त सिन थोक दगी
2: ओजाना हाय दुबु कै नो हौजिक पो आइ बो इमा आइ पागी युम द चलगा हलक पि अम वइना लाइरिक म खतम थरु हाय रि रो
1: आइ नंगी नपुरोइबने मपुरोइबने हाइबे इनबिदुबु सती कौनबने आइने खंगना दुम तौनी नंगसु महै तमलिबि अमगिना थवदो अदुम तौ अमुग हनोवा मखा तारकन नंग 12 क्लास की परीक्षा से थादब सुकिया दियारो

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक नुमिदांगी पोंग मापल तारी मणिपुरी द पाउ ताविरसी
1: आकाशवाणी इम्फाल गांगोम किरण पाउ पाजरी

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर श्रृंगार लेकर मैं माधुरी हूं आज की रात आपके साथ श्रृंगार में आभूषणों का बड़ा महत्व है आभूषण कह लीजिए गहने कह लीजिए ये प्रेम की अभिव्यक्ति का माध्यम रहे हैं सदियों से प्रेम का ऐसा ही एक प्रतीक है कानों में लटकने वाला झुमका जो

लता जी की आवाज में ये प्यारा सा गीत आपने सुना फिल्म परख से और झुमका तो मिल गया अब आगे की क्या बात है बात ये है कि कानों में झुमके जब अपनी मध्यम सी झनकार छोड़ते हैं तो जिसके कानों में ये होते हैं ना उसका अंदाज ही बदला बदला नजर आता है और ये झुमके दिल की हर लहर की खबर दूसरे तक पहुंचा देते हैं अच्छा आप समझ सकते हैं कि झुमका इतना रोमांटिक हो सकता है और अगर ऐसा है तो फिर भारतीय सिनेमा ने तो इसे खूब इस्तेमाल किया है अलग अलग फिल्मों में अलग अलग सीन में और हम भी ऐसे ही गीत आपके लिए लाए हैं अगला गीत है आपके लिए फिल्म दोराहा से आशा जी की आवाज में ये गीत

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

अमानुष फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और बात हो रही है आज हर सिंगार में झुमके की। झुमका सिर्फ गहना ही नहीं, ये प्रेम का प्रतीक है। और देखिए शेर में क्या खूब कहा है कि चांद है जो आसमां में, वो तो है उसकी जबी, और तारे हैं ये सारे उसके झुमके की तरह। और चलिए वो गीत भी सुन लेते हैं हम जो झुमके के लिए बहुत ही जाना जाता है। जी हाँ, आप समझ गए ना, फिल्म मेरा साया से। ये गीत आप सभी के लिए आशा जी की आवाज़ में।

भाई हमारे श्रोता बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि झुमके की बात हो रही है, झुमका बरेली के बाजार में कब गिरने वाला है। तो भाई लीजिए, गिर भी गया झुमका बाजार में। और अगर इस बात को आगे बढ़ाते हैं तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि बहुत ही आकर्षक गहना है और इसका जो है सांस्कृतिक अर्थ भी है। संस्कृति में अगर देखें तो झुमकों का एक अलग ही महत्व है। बहुत तरह के झुमके मिलते हैं और जब भी झुमके श्रृंगार का हिस्सा बनते हैं, चेहरे की जो चमक है वो अपने आप ही बढ़ जाती है। और मोहब्बत में तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि मोटर ना बंगला, झुमका ना हार मांगू। और क्या मोहब्बत में मांगा जाता है, ये इस गीत के माध्यम से मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से बयां हो पाएगा।

0: ये गीत सुना आपने फिल्म किस्मत से शमशाद बेगम आशा जी और साथियों की आवाज में।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: पर है।
1: छोड़ो बहाना।
0: ना ना ना।
2: कहूंगा, एक बार नहीं हजार बार कहूंगा, तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो।
3: क्या चुराया है मैंने तुम्हारा? बोलो क्या चुराया है?
4: मेरा दिल।
3: क्या?

0: हर सिंगार का ये सफर यहीं तक।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि यह भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोब से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashvani, the news read by Nipunika Shahid. Prime Minister Narendra Modi and U.S. Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi today. Mr. Modi said in a social media post that India and the U.S. will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio shared the U.S. perspectives on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio is on a four-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers' meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio today said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific. Inaugurating the U.S. Embassy Support Annex building in New Delhi,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप और आज की रात गीत मेरे मनमीत लेकर मैं माधुरी हूं आप सभी के साथ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये सफर है गीत मेरे मन मीत का और इसमें हम सुनवाते हैं आपको गोल्डन एरा के गाने बिना रुके।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4:00 तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह सफर है गीत मेरे मनमीत का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी आप सभी के साथ। और गीत मेरे मनमीत में हम और आप सुनते हैं गोल्डन एरा के गीत, और वो भी बिना रुके।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। इसी के साथ दीजिए माधुरी को इजाजत गीत मेरे मनमीत से। आप बने रहे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL ने नई दिल्ली में साकुरा साइंस प्रोग्राम 2026 में भाग लेने वाले छात्रों के एक दल को रवाना किया। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी स्कूलों के 56 छात्र, जिनमें 24 लड़के और 32 लड़कियां शामिल हैं, 4 पर्यवेक्षकों के साथ इस महीने की 30 तारीख तक जापान यात्रा पर रहेंगे। इस कार्यक्रम में घाना, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिभागियों के साथ हिस्सा ले रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ये सभी छात्र सरकार की राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता हैं। भारत अप्रैल 2016 से इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। चीन के शांस्की प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट क्यूवान काउंटी की लियूशेनयू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार तथा दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी चिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग के अंतर्गत 5वें उप कार्य समूह भूमि की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क महानिदेशालय ADGPI ने कहा कि यह बैठक भारतीय सेना और रूसी थल सेना के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। लखनऊ में IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 196 रन बनाए। 197 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Nipunika Shahid. Prime Minister Narendra Modi and U.S. Secretary of State Marco Rubio discussed sustained progress in the India-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Teerth in New Delhi. Mr. Modi said in a social media post that India and the U.S. will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jay Shankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio shared the U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio is on a four-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. Defence Minister Rajnath Singh has inaugurated the artillery shell manufacturing plant established at the Savli Vihir Industrial Estate in Shirdi, Maharashtra yesterday. The project developed by Naib Limited will manufacture 155mm artillery shells and has the capacity to produce 5 lakh shells annually. Speaking on the occasion, the Defence Minister said that India is preparing itself for future warfare and becoming self-reliant in defence manufacturing through the Make in India initiative.
3: Self-reliant India और Make in India के लिए private sector की energy का उपयोग आवश्यक है. इसलिए policy related reforms, FDI को, foreign direct investment को liberalize किया गया, strategic partnership model को लागू किया गया, positive

कूल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पानी पर लिखी एक और कहानी, गुमराह। जी हाँ, मुझे भी याद आ रही है ऐसी एक कहानी जिसे याद करके कभी दिल तो कभी आंखें भर जाती हैं। निशा उस दिन कॉलेज से लौटकर चेंज ही करने जा रही थी कि अचानक डोरबेल बजी। कौन हो सकता है इस समय? माँ तो अभी अभी सब्जी लेने गई हैं। यही सोचते सोचते निशा ने दरवाजा खोला। सामने माँ खड़ी थी, लहूलुहान, अस्त व्यस्त, बदहवास, घबराई हुई। क्या हुआ माँ? माँ को इस हालत में देखकर निशा घबरा गई। बेटा, वो अभी मैं जा ही रही थी कि अचानक पीछे से दो लड़के बाइक पर सवार होकर आए और मेरी चेन खींचकर भाग गए। बोलते बोलते माँ रो पड़ी। कोई नहीं माँ, आप तो ठीक हो ना? निशा ने माँ को सहारा दिया, लेकिन वो घबराई हुई थी। बोली, बेटा वो चेन तेरे पापा की आखिरी निशानी थी। ये कहकर माँ फबक पड़ी। माँ के कपड़े मिट्टी में सने थे, गिरने से घुटने छिल गए थे, गले में खरोंचे आई थी जिससे खून बह रहा था। निशा माँ को लेकर पहले डॉक्टर के पास और फिर पुलिस स्टेशन गई और कंप्लेंट लिखा आई। वो सोच रही थी कैसे भटके हुए ये लड़के हैं, जरा भी संवेदना नहीं। माँ जैसी महिलाओं से इस तरह की क्रूरता। उसे एक पुराना गीत याद आने लगा था।

अगले दिन पुलिस स्टेशन से फोन आया। कुछ लड़कों को पकड़ा था उन्होंने। निशा की माँ को शिनाख्त के लिए बुलाया था। निशा माँ को लेकर पुलिस स्टेशन गई। कुछ लड़कों को उनके सामने लाया गया। उनमें से एक को देखकर माँ बोली, हाँ हाँ यही है वो इंस्पेक्टर साहब। निशा जो अभी तक कुछ कागजी कार्रवाई में व्यस्त थी, माँ की आवाज सुनकर नजर उठाई तो देखा कि वो लड़का लगातार निशा को ही देखे जा रहा था। निशा को उसकी सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगी। निशा ने याद करने की कोशिश की, कहाँ देखा है इसे, कहाँ देखा है। फिर हाँ, अचानक ख्याल आया, अरे ये तो उसका क्लासमेट है, प्रेम। निशा के होश उड़ गए। सामने प्रेम खड़ा था। उसे सहसा अपनी आंखों पर विश्वास ही ना हुआ। प्रेम आज एक अपराधी, एक चेन स्नैचर के रूप में उसके सामने खड़ा था।

आज सालों बाद प्रेम को देखकर निशा की आंखों में कॉलेज के पहले दिन से लेकर अभी तक की एक एक घटना किसी चलचित्र की भांति घूमने लगी। दिल्ली में वो उसके कॉलेज का पहला दिन था। मेरठ में अपने घर के नजदीक के स्कूल से 12वीं पास आउट करने के बाद उसने दिल्ली के एक कॉलेज से LLB करने की सोची और फिर आ गई दिल्ली। साथ में माँ ने भी बेटी की पढ़ाई को तरजीह दी और कुछ दिनों के बाद दिल्ली के मॉडल टाउन में आकर किराए पर रहने लगी। निशा के लिए ये एक अनजान जगह थी, न कोई सहेली, न कोई मित्र और न ही किसी से कोई जान पहचान। घर में उसकी माँ के सिवा उसका कोई और ना था। पिता आर्मी में थे और जब निशा छोटी थी तभी एक ऑपरेशन में शहीद हो गए थे। बचपन से माँ ने उसे अकेले ही पाला था, जिसका निशा को पल पल एहसास था। और अब वो कानून की पढ़ाई करना चाहती थी ताकि एक ऊंचा मकाम हासिल कर अपनी माँ को वो सारी सुख दे सके जो उन्हें नहीं मिला। निशा का लक्ष्य उसका करियर था।

0: निशा पूरे मन से पढ़ाई में अपना ध्यान लगा रही थी। उन्हीं दिनों एक लड़का अक्सर निशा का पीछा करता हुआ दिखाई देता। निशा उसे लगातार इग्नोर कर रही थी। एक दिन हद तो तब हो गई जब उस लड़के ने सामने से आकर निशा को प्रपोज कर दिया। निशा रुको। निशा रुक गई। जी बोलिए। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये सुनकर निशा सन्न रह गई। लेकिन मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हैं? जान जाओगी धीरे धीरे, वो लड़का लापरवाही से बोला। वैसे प्रेम नाम है मेरा, याद रखना, प्रेम जो चाहता है वो हासिल करके रहता है। ये कहता हुआ प्रेम चला गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि किसी भी लड़की का पीछा करना, उसे परेशान करना, उस लड़की को कितना मानसिक तनाव देता है। उसे नहीं पता था कि स्टॉकिंग एक अपराध है। प्रेम की बातें सुनकर निशा बहुत डर गई। घराकर उसने माँ को सारी बातें बताई। माँ ने उसे समझाया और निडरता से अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने को कहा। निशा वास्तव में इधर उधर की बातों में अपना समय नहीं गंवाना चाहती थी, लेकिन जितना जितना वो प्रेम से दूर भागती थी, प्रेम कहीं ना कहीं उसका पीछा करता हुआ दिखाई दे ही जाता था। प्रेम लगातार निशा का पीछा कर रहा था और निशा सहमी हुई थी।
1: अरे वही तो है।

साथियों, आप सुन रहे हैं कहानी गुमराह। इस कहानी में निशा, जो कि एक कॉलेज गर्ल है, वो अपनी पढ़ाई पूरी तन्मयता से कर रही है। एक दिन उसकी माँ कुछ चेन स्नेचर का शिकार हो जाती है और पुलिस स्टेशन में माँ बेटी उन स्नेचर

की शिनाख्त के लिए जाती हैं। तो निशा याद करती है कि उनमें से एक लड़का उसका पहले का क्लासमेट है जो उसका पीछा किया करता था। अब आगे की कहानी। निशा को पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं सोचता था और प्रेम को निशा के सिवा। लेकिन निशा इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ थी कि प्रेम के दिल में दरअसल क्या चल रहा है और वो किस हद तक जा सकता है। और फिर जब वैभव से जान पहचान हुई तो निशा को ध्यान ही नहीं रहा कि प्रेम जैसा कोई इस कॉलेज में है भी। वैभव जहां पढ़ने में बहुत तेज था तो वहीं एक संपन्न घराने से भी ताल्लुक रखता था। दोनों के विचार और करियर का लक्ष्य भी एक ही था, इसलिए निशा और वैभव में दोस्ती होते देर

उधर प्रेम को निशा का वैभव से बात करना नागवार लग रहा था। उसे लगने लगा कि निशा वैभव की दौलत देखकर उसकी ओर खींच रही है। उसके अंदर हीन भावना पनपने लगी और वो वैभव से चिढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि निशा ने दौलत की खातिर उसका प्यार ठुकरा कर वैभव से दोस्ती की है। एक तरफा प्यार में तड़पते प्रेम को दिल का टूटना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो निशा को अमीर बन के दिखाएगा, ढेर सारी दौलत कमा कर दिखाएगा। अब वो भटकने लगा, उसके कदम आवारा होने लगे। वो उस रास्ते पर बढ़ने लगा जहां कोई रिश्ता नहीं जाता, सारे रिश्ते छोड़ जाते हैं और इंसान अकेला रह जाता है।

प्रेम बिना मेहनत किए ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाना चाहता था। सो वो कुछ आवारा और अपराधी टाइप के लड़कों के संपर्क में आ गया। धीरे धीरे चोरी, रहजनी, स्नैचिंग उसका पेशा बनता चला गया। उसने दौलत तो हासिल की मगर उसका जमीर मर गया। उसने खुद अपने ही हाथों अपनी संवेदना और इंसानियत का गला घोट दिया। निशा से प्रेम के दावे करने वाला प्रेम आज निशा का ही अपराधी बनकर निशा के सामने खड़ा था।

निशा जी, आप घर जा सकती हैं। कोई जरूरत पड़ी तो आपको बुला लिया जाएगा। इंस्पेक्टर की आवाज सुनकर निशा की तंद्रा भंग हुई और वो ख्यालों की दुनिया से वापस लौटी। उसने माँ को कैब में बिठाकर घर जाने को कहा और कुछ काम का बहाना कर वापस पुलिस स्टेशन लौट आई। हजारों प्रश्न आंखों में लिए वो प्रेम के सामने खड़ी थी और प्रेम के रंग बिरंगे सपनों का महल एकाएक भर भरा कर गिर पड़ा। जोशो जुनों में उसने जो गलत रास्ता इख्तियार किया था उसकी असलियत सामने आ गई थी। मगर इंसान इतनी आसानी से खुद को गुनहगार कहां मानता है। अक्सर वो अपना गुनाह छिपाने के लिए अपना दोष दूसरों पर मढ़ देता है और यही प्रेम ने भी किया। उसे लगने लगा कि इस सब की जिम्मेदार निशा है। ना वो वैभव की ओर आकर्षित होती और ना ही वो इस हाल में होता। उसका कमजोर मन निशा को ही दोष दिए जा रहा था।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी और आज की कहानी गुमराह आपको सुना रही है कुसुमलता। और आपको ये कहानी कैसी लग रही है इसको हमें बताना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldaiardelhi@gmail.com। आपकी ईमेल का हमें इंतज़ार रहेगा और अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो आप रोज़ सुनते हैं, मैं फिर बता देती हूँ, 9868 687 5 3 9868 687 5 3। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ईमेल आईडी मैं आपको बता चुकी हूँ fmgoldaiardelhi@gmail.com। तो आइए इस कहानी को जारी रखते हैं। सुना रही हैं आपकी कुसुमलता।

निशा को सामने देख प्रेम मानो फट पड़ा। मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो निशा, सिर्फ तुम। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और तुम मुझे छोड़कर उस वैभव के पास चली गई। मैंने तुम्हारे लिए दौलत कमाने का ये रास्ता अपनाया। अगर मैं दोषी हूं तो तुम भी बराबर की जिम्मेदार हो। कान खोल कर सुन लो, सजा मुझे ही नहीं तुम्हें भी मिलनी चाहिए। और इस तरह से प्रेम सारा दोष निशा पर मढ़ी जा रहा था।

ईशा जो अब तक चुप थी प्रेम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बोली, प्रेम हम कॉलेज में प्यार करने के लिए आते हैं या अपना करियर बनाने, अपनी जिंदगी को एक सही दिशा देने, अपनी जिंदगी को एक सही दिशा देने। मुझे तो उसी वक्त तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए थी जब तुमने मुझे रास्ते में रोककर परेशान किया था। रही बात प्रेम की, तो तुम किसी से क्या प्रेम करोगे प्रेम, जब जन्म देने वाले माँ बाप से ही तुम प्रेम नहीं कर पाए, उनकी उम्मीदों पर ही खरे नहीं उतरे। आखिर जिसने तुम्हें जन्म दिया उनके प्रति तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी थी, उन्होंने बड़े अरमानों से तुम्हें कॉलेज भेजा और तुम यहाँ अपनी जिंदगी को एक सही दिशा देने के बजाय प्रेम का बहाना कर आवारा गर्दी करने लगे। तुम कहते हो तुम दौलत कमाने के लिए मेरी वजह से गलत रास्ते पर गए। क्या दौलत सिर्फ गलत रास्ते पर ही चलकर कमाई जा सकती है? सही रास्ते पर चलकर भी तो खुद की काबिलियत को निखारा जा सकता है। और हर इंसान को भगवान इतनी तो समझ देता है प्रेम कि वो अच्छे और बुरे रास्ते की पहचान कर सके।

निशा की बातें अब भी प्रेम की समझ में नहीं आ रही थी। वो बोला, निशा मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मेरे प्यार की कदर ना की। प्रेम निशा को ही दोष दिए जा रहा था। निशा एक व्यंगात्मक हंसी हंसकर बोली, प्यार की बात तुम करते हो प्रेम, तुम प्यार के बारे में जानते भी हो? प्यार त्याग सिखाता है, दूसरों का भला करना सिखाता है, लूटना नहीं। तुम खुदगर्ज और स्वार्थी इंसान हो प्रेम, प्यार ने तुम्हें छुआ तक नहीं है। जिस दिन तुम्हें वाकई प्रेम करना आ जाएगा ना प्रेम, उस दिन तुम मेरा तो क्या किसी का भी अहित ना कर सकोगे, लेकिन अगर तुम्हें प्यार करना आ गया तो।

ये कहकर निशा पलटी तो देखा कि सामने प्रेम की मां खड़ी थी। उन्होंने निशा और प्रेम की सारी बातें सुन ली थी। उनकी आंखों में आंसू थे, मानो वो बिना कहे ही अपने बेटे की करतूतों की माफी मांग रही थी। प्रेम ने मां को देखा तो उसकी भी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो मां, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी इस रास्ते पर नहीं चलूंगा, बस मुझे इस पुलिस स्टेशन से बाहर ले चलो। प्रेम की मां निशा की ओर देखने लगी और याचना भरे लहजे में बोली, माफ कर दो बेटी, मैं जिम्मेदारी लेती हूं कि ये अब ऐसा कभी नहीं करेगा। काश कि आपने जिम्मेदारी ली होती आंटी, काश कि सच में आपने अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाया होता तो प्रेम यहां नहीं होता। इनफैक्ट अगर सभी माएं बचपन से ही अपने बेटों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाएं, उन्हें अच्छे से संस्कार दें, लड़कियों का सम्मान करना सिखाएं, उनकी भावनाओं उनकी इच्छाओं का मान रखना सिखाएं, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि कोई भी लड़का कम से कम इस तरह के अपराध तो नहीं करेगा। आंटी, हम अपने घरों में लड़कियों को तो हमेशा से सिखाते रहे हैं ना कि बेटा सही से कपड़े पहनो, देर रात तक घर से बाहर मत रहो, बड़ों का सम्मान करो, आखिर ये सब हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते, आखिर क्यों नहीं सिखाते? तुम ठीक कहती हो बेटी, अगर हम अपने लड़कों का भला चाहते हैं तो अब उन्हें ही सिखाने की बारी है, लेकिन अभी अभी प्रेम को माफ कर दो प्लीज। ठीक है आंटी, आपके लिए, क्योंकि आप भी मेरी माँ की तरह एक माँ हैं और मैं नहीं चाहती कि किसी भी माँ को पीड़ा पहुंचे, इसलिए मैं इतना कर सकती हूँ कि प्रेम की बेल हो जाए, बस अब प्रेम से कहना कि वो सही रास्ते पर चले।

साथियों, तो ये थी आज की कहानी गुमराह। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का निर्देशन और प्रस्तुतिकरण किया रश्मि कुकरेती ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: इस दौरान भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा

0: मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL ने नई दिल्ली में साकुर साइंस प्रोग्राम 2026 में भाग लेने वाले छात्रों के एक दल को रवाना किया। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 56 छात्र, जिनमें 24 लड़के और 32 लड़कियां शामिल हैं, चार पर्यवेक्षकों के साथ इस महीने की 30 तारीख तक जापान यात्रा पर रहेंगे। भारत इस कार्यक्रम में घाना, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिभागियों के साथ हिस्सा ले रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ये सभी छात्र सरकार की राष्ट्रीय साधन शह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता हैं। भारत अप्रैल 2016 से इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। चीन के शांशकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। ये विस्फोट क्युआन काउंटी के लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। रूस ने कहा है कि परमाणु अप्रसार संधि NPT के समीक्षा सम्मेलन में अंतिम दस्तावेज को मंजूरी नहीं मिल सकी, क्योंकि कुछ मुद्दों पर अमेरिका के कड़े रुख के कारण सहमति नहीं बन पाई। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राजदूत डो होंग वियत के प्रयासों और अन्य जिम्मेदार देशों के समर्थन से कई समझौते किए गए तथा सहमति के करीब एक मसौदा अंतिम दस्तावेज के लिए तैयार किया गया। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 196 रन बनाए, जिस लक्ष्य को पंजाब ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi and U.S. Secretary of State Marco Rubio discussed sustained progress in the India-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to the regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi yesterday. Mr. Modi said in a social media about that post that India and the U.S. will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio shared the US perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio is on a four-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific, inaugurating the U.S. Embassy support and its building in New Delhi. Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for PAC Silica.
2: Expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship.
1: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rose Garden Mela through video conferencing. In the 19th edition of the Rose Garden Mela, more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations were distributed. Defense Minister Rajnath Singh has inaugurated the artillery shell manufacturing plant established at the Savli Vihir Industrial Estate in Shirdi, Maharashtra yesterday. The project developed by Nibe Limited will manufacture 155mm artillery shells and has the capacity to produce 5 lakh shells annually. Speaking on the occasion, the defense

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं सुरभि आपके साथ। कभी कभी लगता है जैसे तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं बिना कहे, उसमें अपनापन भी है, शरारत भी और एक एहसास भी जो दिल को तुम्हारे पास खींच लाता है बार बार। शायद मोहब्बत का एहसास ऐसा ही होता होगा जब किसी के ना होने के बावजूद दिन खूबसूरत लगने लगे और उसकी मुस्कुराहट जब भी याद आए दुनिया खिल जाए। बहुत खूब कहा है किसी ने कि वो दिल नवाज है लेकिन नजर शनास नहीं, मेरे इलाज मेरे चारागर के पास नहीं। वो दिल नवाज है लेकिन नजर शनास नहीं।

रात की खामोशी में एक चेहरा ऐसा भी होता है जो याद बनकर दिल में समा जाता है, और फिर उनकी एक मुस्कान ऐसा असर करती है जैसे चेहरे पर बिजली गिर पड़ी हो, और ये दिल बस मुस्कुराता रह जाता है।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बहुत खूब कहा किसी ने कि हुस्न को दिल में छुपा कर देखो, हुस्न को दिल में छुपा कर देखो, ध्यान की शमा जला कर देखो, फाख्ता चुप है बड़ी देर से क्यों, सरों की शाख हिला कर देखो, दिल में बेताब हैं क्या क्या मंजर, दिल में बेताब हैं क्या क्या मंजर, कभी इस शहर में आकर देखो।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है गीत सुहाने और आपके साथ हूं मैं सुरभि। बहुत खूब कहा किसी ने कि करता उसे बेकरार कुछ देर, करता उसे बेकरार कुछ देर, होता अगर इख्तियार कुछ देर। आंखों में कटी पहाड़ सी रात, आंखों में कटी पहाड़ सी रात, सोजा दिले बेकरार कुछ देर। ऐ शहरे तरप को जाने वालों, ऐ शहरे तरप को जाने वालों, करना मेरा इंतजार कुछ देर, करता उसे बेकरार कुछ देर, होता अगर इख्तियार कुछ देर।

0: जन्नत का नजारा।
1: और चलिए अब चलते चलते फकीरा फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

और इसी गीत के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। हमारी मुलाकात होगी रात सुरमई प्रोग्राम में। और अब सुरभि को दीजिए अनुमति, आप कुछ ही देर में सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में आज चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजीरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार यह अभियान खौनी पालवा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की शामिल है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट क्यूवान काउंटी के लियूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों के जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी चिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमेरिका के सांसदों और आवर्जन अधिकारी कार्यकर्ताओं ने ट्रंप प्रशासन की नई ग्रीन कार्ड नीति की आलोचना की है। इस नीति के अंतर्गत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने गृह देश से ही आवेदन करना होगा। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि वे अमेरिकी नागरिकता और आवर्जन सेवा USCIS के इस निर्णय के खिलाफ हर संभव कदम उठाएंगे और इसे वापस लेने की मांग करेंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह छूट H-1B वीजा पर काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों पर भी लागू होगी या नहीं। फिलहाल USCIS ने कहा है कि देश के भीतर रह रहे लोगों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 196 रन बनाए। 197 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब ने 18वें ओवर में जीत हासिल कर ली। पंजाब के लिए श्रेयस अय्यर ने नाबाद 101 रन की शानदार शतकीय पारी खेली, जिस पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं आपके साथ सुरभि। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस बेहद खूबसूरत गीत के साथ। फिल्म है कलाकार

कभी यूं मिले कोई मसलेहत, कोई खौफ दिल में जरा ना हो, मुझे अपनी कोई खबर ना हो, तुझे अपना कोई पता ना हो, वो फिराक हो या विसाल हो, तेरी याद महकेगी एक दिन, वो गुलाब बन के खिलेगा क्या, जो चिराग बन के जला ना हो।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप

सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

रात आंखों में ढली पलकों पे जुगनू आए, रात आंखों पे ढली पलकों पे जुगनू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए। बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरी खुशबू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए, रात आंखों में ढली पलकों पे जुगनू आए। उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया है, उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया है, मुद्दतों बाद मेरी आंखों में आंसू आए, किस तकल्लुफ से गले मिलने का मौसम आया, किस तकल्लुफ से गले मिलने का मौसम आया, कुछ कागज के फूल लिए कांच के बाजू आए। उन फकीरों को गजल अपनी सुनाते रहियो, उन फकीरों को गजल अपनी सुनाते रहियो, जिनकी आवाज में दरगाहों की खुशबू आए। बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी खुशबू, कोई खुशबू मैं लगाऊं तो तेरी खुशबू आए।

रात सुरमई प्रोग्राम सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बहुत खूब कहा है किसी ने कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। खुदा से रोज तुमको मांगता हूँ, मेरी चाहत इबादत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। वो चेहरा चांद है आंखें सितारे, वो चेहरा चांद है आंखें सितारे, जमी फूलों की जन्नत हो गई है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, चले भी आओ मुद्दत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है।

और सदागर फिल्म के इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण भी साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में चलाए गए एक तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजेरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये अभियान खोनी पालवा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की शामिल है। मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन म्यूजो जिलराई पावल MZP ने मुख्यमंत्री लाल दुहोमा पर राजनीतिक धोखे और पक्षपात का आरोप लगाते हुए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी की विवादित पुनर्नियुक्ति को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार ने 23 अप्रैल को आदेश जारी कर लाल रोहिंगड़ी को पुनर्नियुक्त करने को मंजूरी दी थी। वे 23 अप्रैल को वाणिज्य और उद्योग तथा भू विज्ञान और खनन विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो रही थी और 1 मई से उन्हें पुनः सेवा में लिया गया। अमेरिका के सांसदों और आवर्जन अधिकारी कार्यकर्ताओं ने ट्रंप प्रशासन की नई ग्रीन कार्ड नीति की कड़ी आलोचना की है। इस नीति के अंतर्गत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने गृह देश से ही आवेदन करना होगा। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस फैसले को गलत बताया।

बताते हुए कहा कि वे अमरीकी नागरिकता और आवर्जन सेवा USCIS के इस निर्णय के खिलाफ हर संभव कदम उठाएंगे और इसे वापस लेने की मांग करेंगे। हालांकि अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि यह छूट H-1B वीजा पर काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों पर भी लागू होती है या नहीं। फिलहाल USCIS ने कहा है कि देश के भीतर रह रहे लोगों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 196 रन बनाए। 197 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में जीत हासिल कर ली। पंजाब किंग्स की ओर से श्रेयस अय्यर ने नाबाद शतकीय पारी खेली, उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्वागत है आप सभी का इस रात और सुबह के बीच के खूबसूरत सफर पर। ये शांति और सन्नाटा, जब आधी दुनिया मीठी नींद सो रही है और आधी दुनिया अपनी आंखों में नए ख्वाब लेकर जाग रही है। जी हाँ, आप अकेले नहीं हैं, हम हैं आपके साथ इस शांत से सन्नाटे में, आपकी तन्हाई को सुरों से सजाने के लिए। समय हुआ है 3:11 और 41 सेकंड। आप हैं हमराही कार्यक्रम में, जिसे आप सुन रहे हैं आप ही के पसंदीदा चैनल, आपके अपने चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। नमस्कार।

इस गहरे और खूबसूरत सन्नाटे में जब रेडियो पर कोई युगल गीत बजता है, यानी दो आवाजों की जब जुगलबंदी गूंजती है, तो लगता है जैसे दिल को किसी का इसी तरह से खूबसूरत सा साथ मिल गया है। जी हाँ, हम हैं आपके साथ हमराही कार्यक्रम में और आप इसे सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहाँ आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। फिल्म महल का ये गीत आप सभी के लिए किशोर कुमार साहब की आवाज़ में।

0: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात
1: नब्बे वर्षों की वो मधुर गूंज अनगिनत आवाजें अनगिनत एहसास संगीत संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर
2: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर हर आवाज में बसता है अपनापन
1: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा
2: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग

आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल, आपका अपना चैनल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है सुबह के 3:28 और 6 सेकंड। आप हैं हमराही कार्यक्रम में अपनी ही दोस्त रूपा के साथ। साथियों कहते हैं कि अकेले चलना आसान हो सकता है, लेकिन असली सफर का मजा तो तब आता है जब कोई हमराही साथ हो, चाहे वो जिंदगी का सफर हो या फिर सुरों का। और ये खूबसूरत रिश्ता बंधा होता है एक रिश्ते की प्यारी सी डोर के साथ।

इस खामोश रात में हवाएं भी कुछ कह रही हैं। दिल की धड़कनें अब काबू में कहां रह रही है। जरा धीरे से मुस्कुराकर कह दो उसे जो कहना है। जरा धीरे से मुस्कुराकर कह दो उसे जो कहना है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ हमारी और आपकी सांसें बह रही हैं।

तो ये जिंदगी तेरे बिना एक पल भी चलती नहीं। अब तो ये जिंदगी तेरे बिना एक पल भी चलती नहीं। तेरा साथ इतना सुहाना लगे जैसे रेशम की डोरी नहीं। कभी कभी साथ इतना अच्छा लगता है कि दिल चाहता है कि कोई भी पल आपस में जुदाई का सबब ना बने, लेकिन वक्त के हाथों सभी मजबूर हैं। कभी ना कभी तो जुदाई का सबब आता ही है। फिलहाल आप हैं हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 3:40 और 39 सेकंड। आप हैं हमराही कार्यक्रम में अपनी दोस्त रूपा के साथ। आइए सुनते हैं फिल्म रामपुर का लक्ष्मण फिल्म से ये गीत किशोर कुमार साहब और लता जी की आवाजों में।

वक्त की रेत हाथों से इस कदर फिसल जाती है, वक्त की रेत हाथों से इस कदर फिसल जाती है, कुछ यादें उम्र भर के लिए दिल में ठहर जाती हैं। क्या पता कल ये रात, ये समा, ये साथ हो या ना हो, चलो आज इस पल को जी लें, क्या पता फिर ऐसी सुबह आती है या नहीं आती है। लेकिन जनाब, हम तो बिल्कुल वादे के पक्के हैं, जब समय होता है आपसे मुलाकात का तो बस झटपट से चले आते हैं आकाशवाणी के पास और जो राहें मिलवाती हैं हमें आपसे। फिलहाल समय हुआ है 3:46 और 14 सेकंड। सुनते हैं एक और मधुर सा युगल गीत जिसे हमने शामिल किया है आया सावन झूम के फिल्म से, लता जी और रफी साहब के स्वर में।

हमराही के सफर पर आप हैं रूपा के साथ और फिलहाल जो गीत आपको सुना रहे हैं वो है जॉनी मेरा राम फिल्म से किशोर साहब और आशा जी की आवाजों में आज की आखिरी पेशकश।

0: अरुणिमा के सफर पर आपसे फिर से मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल रूपा को विदा दीजिए हमराही की कार्यक्रम से। आप सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण भी साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत की अध्यक्षता में 21 और 22 मई को नई दिल्ली में 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह CTWG की पूर्ण बैठक और उप समूहों की बैठकें आयोजित की गई। ये बैठकें CTWG की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने उद्घाटन दिवस पर मुख्य भाषण दिया। उन्होंने वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों के सामूहिक और एकजुट प्रयासों के महत्व पर बल दिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजेरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये अभियान खोनी पलावा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध ढंग से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की शामिल है। मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन म्यूजो जिलराई पावल MZP ने मुख्यमंत्री लाल दुहोमा पर राजनीतिक धोखे और पक्षपात का आरोप लगाते हुए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी की विवादित पुनर्नियुक्ति को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार ने 23 अप्रैल को आदेश जारी कर आर लाल रोडिंगी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी थी। वे 30 अप्रैल को वाणिज्य और उद्योग तथा भू विज्ञान और खनन विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो रही थी और 1 मई से उन्हें पुनः सेवा में लाया गया। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट क्यूआन काउंटी के लियूसेनियू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार तथा दुर्घटना के कारणों की जाँच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 196 रन बनाए। 197 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi and U.S. Secretary of State Marco Rubio discussed sustained progress in the India-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Teerth in New Delhi yesterday. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio shared the US perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio is on a four-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rozgar Mela through video conferencing. In the 19th edition of Rozgar Mela, more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations were distributed. Defense Minister Rajnath Singh has inaugurated the artillery shell manufacturing plant established at the Savli Vihir Industrial Estate in Shirdi, Maharashtra yesterday. The project developed by Nibe Limited will manufacture 155mm artillery shells and has the capacity to produce 5 lakh shells annually. Speaking on the occasion, the Defence Minister said that India is preparing itself for future warfare and becoming self-reliant in defence manufacturing through the Make in India initiative.
4: सेल्फ रिलायंट इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5,000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे।
3: The center has released more than 527 crore rupees under the National Health Mission as the first tranche for West Bengal for financial year 2026-27. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda reviewed the healthcare systems in the state during a virtual meeting with Chief Minister Suvendu Adhikari. The Chief Minister also announced that Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. Delhi government decided to transform all sub-registrar offices into modern technology-driven and citizen-friendly service centres. The initiative aims to eliminate delays, corruption, middlemen and unnecessary procedural hurdles in property registration services across the city. In a statement, Chief Minister Rekha Gupta said, the new model registrar offices will provide facilities such as digital assistance counters, smart token systems, online appointment booking, real-time application tracking and trained staff to ensure transparent and time-bound service delivery. In China, 90 people have been killed in a gas explosion at a coal mine in Shaanxi province. The gas explosion occurred at the Liu Shenyu coal mine in Shenhua County. President Xi Jinping has issued instructions for a comprehensive rescue operations and treatment of the injured. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief at the loss of lives in the accident. In a social media post, he extended his condolences to President Xi Jinping and the people of China on behalf of the people of India. In IPL cricket, riding on an unbeaten 101 runs by skipper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in Lucknow last night. chasing a target 197 runs set by Lucknow Super Giants. Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. Earlier, put into bat first Lucknow Super Giants posted 196 runs with a loss of 6 wickets in stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार प्रणाम, आप हैं अपने ही चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है सुबह की 4:11 और 23 सेकंड। आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ। नमस्कार।

अरुणिमा यानी वो सुबह की लालिमा जो दिन हमारे जीवन में एक नई उम्मीद और आशा का सवेरा लेकर आती है। तैयार रहे हर पल हर क्षण, क्योंकि आपकी जो उम्मीद है और आशा है उसी से ही आपके जीवन का सफर और भी आसान हो सकता है। तो इस आशा की किरण को अपने हाथों से फिसलने ना दीजिए, अपने दिल को काबू में रखिए और जोश को और भी ज्यादा बनाकर रखिए, क्योंकि ये जिंदगी अगर अंधेरों से भरी हुई है तो लाखों तारे भी हमारे पास हैं जो हमारे गमों को, गम की काली रातों को दूर करने में सहायता करेंगे। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रूपा है आपके साथ, अरुणिमा लेकर।

एक अंधेरा लाख सितारे। जी हाँ, अंधेरा महज कुछ पल का, कुछ क्षण का होता है। जब उस गम को हटाकर लाखों सितारे यानी हमारी जिंदगी को रोशन करने के लिए अगर हम देखें तो एक छोटी सी खुशी भी बहुत महत्व रखती है। एक छोटी सी बात जो हमारे दिल को एक नया जोश दे, एक नई हिम्मत दे। हम सभी के पास एक सुपर पावर है, एक ऐसी शक्ति जिसका इस्तेमाल करना हम सब भूल जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सकारात्मक सोच की, विचारों की। बातें होंगी और भी बहुत सारी, पर इस गीत के बाद।

घबराना कैसा, जी हाँ, दिल को थोड़ा करना कैसा। गर्दिश में चाहे कितने भी तारे हों, लेकिन हमें हमेशा हिम्मत से ही काम लेना होगा। किसी ने खूब कहा है, जैसा हमारा विचार होता है वैसा ही हमारा संसार होता है। हमारे दिमाग में रोज हजारों विचार आते हैं, लेकिन विजेता जो बनता है ना, वो सिर्फ सकारात्मक सोच और विचारों को अपने दिल में घर करने के लिए रुकने की इजाजत देता है और गम की सोच को हमेशा परे करता है। जब मरना ही है सभी ने, तो जीने को जो खुशी है, जीने की जो उम्मीद है, आशा है, हम उसको क्यों धूमिल होने लगे। अगर हम उसे ही धूमिल करने लगेंगे तो जीने की आशा हमारे दिल में क्या रहेगी। तो जनाब, हमेशा जोश खरोश के साथ आगे बढ़ते रहिए, हिम्मत से काम लीजिए। माना कि रास्ते पर चलते हुए कुछ कठिनाइयां आ ही जाती हैं, यही तो जीवन है। अगर जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होंगे तो कैसा जीवन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा के सफर पर आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन।

0: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो

असली ओजी कौन है बॉस? रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरुणिमा में आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। बातें कर रहे हैं हम सकारात्मक सोच की और विचारों की। जी हाँ, सकारात्मक सोच ऐसी सोच जो हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और इसी सोच को हमें हमेशा से दिल में बनाए रखना है। कभी भी अपने दिल को इतना कमज़ोर ना बनाएं कि हर दुख की घड़ी में हम घबरा जाएं। सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो आपके अपनों को सही राह दिखाने में कामयाब रहता है और उनका हौसला बढ़ाने में आगे ही आगे चलने का सबब देता है।

0: अपनी वफाए कितनी जताए कितनी छुपाए कह देना,
1: अपनी कहानी कितनी छुपाए कितनी सुनाए कह देना,
0: अपनी वफाए कितनी जताए कितनी

भाई हम तो इतना ही कहेंगे, हर दिन अगर चुनौती लेकर आता है उसके साथ साथ अपने साथ सकारात्मकता भी लेकर आता है। बस हमें उस लम्हे को थामना है, देखना है कि उस मुश्किल में, उस परेशानी में ही तो उसका हल छुपा है। बस हमें थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। इसी कोशिश का नाम है जिंदगी। जी हाँ, ऐसी जिंदगी जिसे हम चाहें तो उसे विभिन्न रंगों से भर सकते हैं, और अगर ना चाहें तो कुछ नहीं। गोया कि यूं माना जा सकता है कि जो कुछ भी है वो ऊपर वाले के हाथ में तो है ही, पर हमारे हाथ में भी थोड़ा कुछ तो है। जीते रहिए इसी उम्मीद के साथ। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और किसी ने खूब कहा है, वो जीवन ही क्या जीवन जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए हो। अगर जीना है तो सबके लिए जी कर देखो, फिर आपको इस जीने का अंदाज ही बदला हुआ लगेगा।

अरुणिमा सुन रहे हैं आप आपके अपने चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज की अरुणिमा के साथ मैं हूं रूपा धवन, आप ही की अपनी दोस्त। तो जनाब, जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं सकारात्मक सोच की और विचारों की, तो यकीन मानिए जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे आसपास की परिस्थितियां भी अच्छी होने लगती हैं। वैसे मुश्किलों का जिंदगी में आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन उन मुश्किलों को पार करके मुस्कुरा लेना और मुस्कुराकर जीना ही असली जिंदगी है, खासकर तब जब आपके हर पल में आपके अपने साथ देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि खुशी के लम्हों को थामने के लिए हमें थोड़ी सी देरी हो जाती है। जी हाँ, जब तक खुशियां हमारे पास पहुंचती हैं, हम कहते हैं ओह कितने समय बाद हमारे जीवन में ये खुशी आई। तो कुछ ऐसी ही देरी का इजहार करता है ये गीत, जिसे आपको सुना रहे हैं दुनियादारी फिल्म से अमित कुमार और आशा जी की आवाज में।

0: नहीं आएगी तो क्या करोगे?
1: उसकी चौखट पे जाके मरूंगा।
0: ना ना ना ना, तुम मरोगे तो मेरा क्या होगा?

यकीन मानिए एक अजीब सा सुकून और गजब की एनर्जी महसूस होने लगी है अभी। जी हाँ, मुझे तो यही महसूस हो रहा है क्योंकि यही तो जादू है सकारात्मक सोच और विचारों का। आज का अरुणिमा यहीं तक। रूपा विदा लेती है आपसे। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद फिर से भोर सुहानी कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा दीजिए रूपा को। नमस्कार।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की इससे पहले विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा रणनीतिक तकनीकों व्यापार तथा निवेश ऊर्जा सुरक्षा कनेक्टिविटी शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीका का दृष्टिकोण साझा किया अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट इनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और ज्यादा प्रगति होगी भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है भारत की अध्यक्षता में 21 और 22 मई को नई दिल्ली में 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह CTWG की पूर्ण बैठक और उपसमूहों की बैठकें आयोजित की गई ये बैठकें CTWG की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने कार्यक्रम का मुख्य भाषण दिया उन्होंने वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों के सामूहिक और एकजुट प्रयासों के महत्व पर भी बल दिया महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजीरिया के नागरिकों को हिरासत में लिया गया पुलिस अधिकारी के अनुसार ये अभियान खोनी पलाव क्षेत्र में चलाया गया पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में अवैध रूप से रह रहे हैं चीन के शांसक्सकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है यह विस्फोट क्युआन क्वांटी के शियुलियू शेनू में कोयला खदान में हुआ अब तक 201 लोगों को बचाया जा चुका है चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है बांग्लादेश में कल खसरा और खसरा जैसे लक्षणों से 13 और लोगों की मौत हो गई इसके साथ ही पुष्टि और संदिग्ध मौतों की कुल संख्या बढ़कर 512 हो गई है बांग्लादेश के एक प्रमुख समाचार पत्र की रिपोर्ट के मुताबिक खसरे से पुष्टि मौतों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है जबकि संदिग्ध मौतों की संख्या 426 तक पहुंच गई है लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 196 रन बनाए 196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में जीत हासिल की मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ

वृक्षों की डालियां लहराकर झूम रही हैं, वृक्षों की डालियां लहराकर झूम रही हैं, पक्षियों की चहचहाहट कानों में रस घोल रही है। क्षितिज पर सूरज की लालिमा ने बसेरा डाला है, क्षितिज पर सूरज की लालिमा ने बसेरा डाला है। कायनात का प्यारा तोहफा ये भोर सुहानी लाया है। स्वागत कर रही है ये ताजगी भरी सुबह आज की नव किरणों की रोशनी में, सारी दुनिया को एक नई ताजगी से, खुशियों से सराबोर कर रही है। हम भी आपके साथ वक्त की रफ्तार के साथ आपका साथ निभा रहे हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड के माध्यम से भोर सुहानी लेकर हाजिर हूँ मैं आप ही की सेवा में, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। सुप्रभात, प्यार भरा मेरा नमस्कार। ये सवेरे का सूरज हम सबके लिए है।

नई रोशनी से प्रकाशित करता सवेरे का सूरज, दुनिया का हर कोना अपनी लालिमा से भिगोए हुए है। धीरे धीरे ये लालिमा आसमान से लेकर दुनिया के हर कोने तक छा जाएगी और इस सवेरे के सूरज का आज के नए दिन का स्वागत करने में कोई भी कोर कसर छोड़ नहीं रहा। जी हाँ, वृक्षों की डालियां लहराकर झूम रही हैं, पक्षियों की चहचहाहट भी हो रही है। आज की सुबह की स्वागत की तैयारियों में सब लगे हुए हैं। ये ताजगी भरी सुबह आज और कौन सी खुशियां लेकर आएगी हमारे लिए, ये अभी तक एक रहस्य है। जैसे जैसे धीरे धीरे दिन बीतेगा, हम अपनी अपनी खुशियों की ओर रवाना हो जाएंगे। राह में नई चुनौतियों को पार करके एक खुशियों भरा रास्ता चुनेंगे। पत्तों पर बिखरी ओस की बूंदें, ठंडी हवा, ये सब इस बात का सबूत है कि कायनात ने हमें आज का दिन एक और तोहफे के रूप में दिया है। और कौन कौन इसकी स्वागत की तैयारी कर रहा है या कैसे स्वागत कर रहा है, सुनते हैं इस गीत के माध्यम से।